ललो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी. इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ
1: 3
2: सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारियत दस्तियाब आहिनि.
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी.
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000.

जिंदगी में सबसे कीमती क्या है? आपको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती तो भाईजान ये चीज है, और मुझे बताइए वो क्या है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप शामली प्रोग्राम होते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस हैं, बिल्कुल जी शामली प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है ना, कहते हैं कि भाई आधी जो जानकारी होती है, आधी जो नॉलेज होती है वो नुकसानदायक होती है। अगर आपके पास किसी भी चीज के लिए नॉलेज नहीं है, आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है, तो वो चीज आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप लोगों को बताएंगे कि ना सिर्फ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि आपकी खूबसूरती का ख्याल भी रखने वाले प्रोडक्ट्स हैं। वो कैसे जनाब? वो ऐसे कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं, हर तरह से वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हैं जनाब। आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखते साथ ही इनको तैयार किया गया है। और मजे की बात कि हर तरह से जो है ना, आप लोगों के लिए इनके अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि जिन लोगों की बेसिक सी बेसिक नीड भी होती ना, कोई भी प्रोडक्ट अगर वह साबुन लगाना चाहते हैं, वो फेस वॉश लगाना चाहते हैं, नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं, फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, एक नी ट्यूब लगाना चाहते हैं, या फिर लोशन लगाएंगे सर्दियां जब आएंगी तब तो उन तमाम तो लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट मौजूद है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहें, बस वो आप सिलेक्ट करेंगे, देन अप्लाई करेंगे। और ऑल स्किन टाइप के लिए है, ये भी बड़ी बात है कि ये आपके हर स्किन टाइप के हिसाब से तैयार किया गया है। कोई भी इसके अंदर जो है ना, वो नुकसानदायक अज़ा नहीं ऐड किए गए हैं जो कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाए। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम अगर हम आप लोगों को बताते हैं, तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात यह है कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द की खूबसूरती और निखार के लिए है। बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है, ये जिल्द को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके चेहरे की खुश्की हो, दाग धब्बे हो, बेरोनकी हो, ये सब कम हो जाते हैं, जबकि आपकी जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब, जैसे कि आप जानते हैं, एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क, ये तमाम चीजें जब आपकी खूबसूरत से चेहरे पर आती हैं तो आपकी खूबसूरती में मजीद इजाफा आ जाता है। और ना सिर्फ इजाफा बल्कि आपकी खूबसूरती मजीद जो है ना वो लॉक हो जाती है। अगर आप ये चीजें जो है ना वो जहन में रखते हैं कि भाई हमने जो भी प्रोडक्ट लगाए हैं हमें रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे जैसे मिलने चाहिए, तो आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। साथ में आप ट्राई कीजिएगा व्हाइटिश ब्यूटी सोप या फिर व्हाइटिश फेस वॉश। अगर आप साबुन लगाने वाले लोग हैं तो फिर आप व्हाइटिश ब्यूटी सोप इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो व्हाइटिश फेस वॉश लगाइएगा, जो विटामिन सी से तैयार किया गया है, ब्राइटनिंग है आपकी स्किन को बनाएगा, एंटी एजिंग के लिए है, बहुत ही अच्छा क्रीमी सा फेस वॉश है। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप एक्ने की वजह से काफी वाला परेशान है, शदीद वाला परेशान है, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब अवेलेबल है। ना सिर्फ आपके चेहरे के एक्ने का खात्मा, बल्कि आपके चेहरे पर एक्ने हो, एक्ने के निशानात हो, दाग धब्बे हो, चोट का निशान है, जलने का निशान है, कितनी सारे जिद्दी निशानात अगर आपके स्किन के ऊपर मौजूद है, आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है। फुल जड़ी बूटियां इसके अंदर ऐड की गई हैं, आप लोगों की स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर होगी, एक्ने फ्री होगी और बहुत ही प्यारी बन जाएगी। और साथ में अगर आप कोई भी फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट जो कि भाई आप लोगों को मेकअप से दूर रखे, या फिर इस गर्मी के मौसम में आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आप कहीं लगाएं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपका डेली बेसिस पर कहीं जाने का काम है, तो आप व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं बाकायदगी के साथ। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह को लगाएं, रात को लगाएं, दोपहर को लगाएं, शाम को लगाएं, जब आपका दिल करे तब लगाएं, क्योंकि व्हाइटिश लवली क्रीम जो है रेडियंट अल्ट्रा विटामिंस के साथ तैयार की गई है। 30 विटामिंस के कैप्सूल इसके अंदर मौजूद है, विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, ऐसे बहुत सारे विटामिंस जो कि आपकी स्किन के लिए जरूरी होते हैं। और उसी के साथ साथ इसके अंदर जो है ना सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, ताकि ऐसा नहीं कि भाई अगर इस कड़कती धूप में आप बाहर निकल रहे हैं, आपका कोई ऐसा काम है और आपको बाहर निकलने के लिए सनस्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ रही है और आपके पास अच्छा वाला सनस्क्रीन नहीं है, तो आप व्हाइटिश लवली क्रीम लगाकर अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सूरज के इन खतरनाक असरात से। तो आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, तो हर स्किन टाइप के लिए है व्हाइटिश के तमाम प्रोडक्ट्स। तो इस्तेमाल करती रहिए, खूबसूरतियां हासिल करती रहिए और डायल करती रहिए 03-15-799-0595-0315-79-5595 हिन नंबर ते राबतो कयो जे तव्हांजे एरिया में तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते ही प्रोडक्ट अगर नथा मिलनि व्हाइटिश वारनि जा, त तव्हां हू अवेलेबल कराए सघो।

अच्छा वासु भाई हमारे साथ मौजूद है। वासु भाई कहते मुझे प्यारी अदी वालेकुम अस्सलाम केड़ा हाल है खुश आयो सफा मजे में ताऊ बुदा की आयो प्यारा सोना भा। किशोर भाई कहते हैं कि जिनको सबसे ज्यादा अहमियत दी उन्होंने अहमियत हमें अहमियत नहीं दी तो अब फैमिली इम्पोर्टेंट है। ओके जी ओके। और मुलायम दोसार कहते हैं सिडो जी अर्ज किया है रोज फ्री में शो में शामिल होना अच्छा नहीं लगता। मुजाहिद इरादा क्या है कल वाइट एश क्रीम लेकर आऊंगा। ये हुई ना बात भाई बिल्कुल ऐसा एक जमीर होना चाहिए इंसान के अंदर कि रोज फ्री में क्या हम शो सुन रहे हैं भाई। सदरा इतना बता रही है तो हम लेकर आते हैं वो वाला प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए। तो अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं तो व्हाइट एश लवली क्रीम लगा सकते हैं भाई जान। ये तो हर एक इंसान की नीड है भाई। इसे बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है कोई एज लिमिट नहीं है। तो व्हाइट एश लवली क्रीम मेरे कहने पर तो एक मरतबा जरूर लगा कर देखिएगा आपको बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट लगेगा। बोलेंगे भाई वाह वाह सदरा सफा सही पे चवे।

अच्छा लुबी आ चुकी है प्रोग्राम में. वालेकुम अस्सलाम सिरू जानी, क्या हाल है? मैं भी आपके साथ साथ हूँ. नाइस यो, आज कोई अच्छा सा गाना मेरे नाम कीजिएगा. ओके जी ओके. और चाचा खालिद कहते हैं मेरी लाइफ में आपका शो बहुत अहम है. ओके क्या बात है. और फहीम शेख कहते हैं टॉपिक मेरी जिंदगी में मेरी फैमिली बहुत कीमती है. मुझे लगता है जब मैं अपनी फैमिली से दूर जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा. ऐसा होता ही भाई, ऐसा होता है. हम अपनी फैमिली से वाकई बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बदले में मैं ये चाहती हूँ कि वो भी हमसे उतना ही प्यार करे. कुछ बातें ऐसी होती है जो शायद बतानी नहीं चाहिए. और मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया. और एम अंसारी कहते हैं टॉपिक पे मेरे लिए खास वो ही है जो मुझे, अच्छा जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं बनिस्बत जिनसे मैं एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता है, जिनसे मेरी वाबस्ता है. ओके जी. या कुछ रिश्ते जिनसे मैं रिलेट करता हूँ. ओके जी ओके. यानी कि गाल समझ में अची वही तां चाहता चवण चाहियो. अनवर भाई कहते टॉपिक औलाद. वाह वाह वाह जी गाल कयो वाला. अच्छा मुजाहिद बोजार के स्टूडियो जी टॉपिक मेरे ख्याल में दुनिया में कीमती माँ बाप हैं, उन जैसी कीमती चीज दुनिया में कोई चीज नहीं है. क्या बोलते तो माँ भी यही बोलती. उदास लड़की कहती है बट खुशी की वजह तुम ही हो, जब जब तुम्हारा साथ होता है वो वक्त खुशी फन वाला होता है. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. कोई बात नहीं कोई बात नहीं. मोमन ताहिर लुंड हमारे साथ मौजूद. वालेकुम असलम. विलेज वलीदात खान लुंड नज़द सिठारजा से प्रोग्राम लाजवाब आई. तमाम जो मोहब्बत हुआ भाउन जो मुख्य बुधायो तमाजे गोठ में मिले थी कौन वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. अगर तुम भी वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करण चाहियो था तो तुम पाजे करीबी जनरल स्टोर से बाबा अवल जको ना अवेलेबल करायो. अवेलेबल कराइंदा तदी तुमजे गोठ में मिलंदी, तुमजे सिटी में मिलंदी, उता वनी तुम इजीली वठी सको था. उनन जलाए तुम के बस ने नंबर ते राबत कोनो आहे. नंबर आहे 03159799595. मानो चंदा ना बाजी तुम सिंधी में नंबर नथा बुदन करे, ऐसा नंबर डायल नथा कयो. सिंधी में बुदायो ती हाने नंबर डायल कयो. अच्छा ढो भलो गानो हलो. अच्छा अज मैं कोशिश कदम तो प्रोग्राम में सजू तवजो फरमाइशू ही लगाया. चलो ना गाल ते पोस्ट के लाइक शेयर करी छोड़ो.

अच्छा निदा, मैं भी आप लोगों के साथ ही सुन रही हूँ उसे गाने, आप तो जानती हैं। हजार खान चौधरी भाई मैं सुन रही हूँ, वालेकुम अस्सलाम अदी, गुड शो, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई जान। ऐसे नारबानी मेरे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम, असा भी अच्छी वयासी, बाहर लोडे गर्मी में सदरा छा हला, उम्मीद है तो खुश हूँ, शाद हूँ, आबाद हूँ, न याद हूँ, नहीं विसर, बिल्कुल मां मजे में आया। पर गर्मी जो ना वागे हशर नशर कर छो है, गर्मी की वजह से जो है यकीन क्यों अलाए जो घणी कावड़ इन चिड़ थी भैया। बस दुआ करो ताम आगे दिन निकली वनी।

वाह साईं वाह, वाह जो कनेक्शन था उससे. ओके प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए. और उसके अलावा अच्छा फहीम कहते हैं कि माँ के कदमों में है जन्नत का राज, माँ की मोहब्बत है दिल की एक आवाज, माँ की झोली में सब गम भूल जाते हैं, माँ के बगैर हम अधूरे रह जाते हैं. बिल्कुल तमा डाडो भलो मैसेज कयो है. अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद है, भाईजान को खुशा मदीद कहते हैं, दर्दी दिल आ चुकी है. वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, जल्दी जल्दी चलो शो आ गया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम स्वीटी. और वासु भाई कहते हैं, अदी मैं तेरा प्रोग्राम रात बुध सा हण हण चलो चलो ठीक है तां रात बुध सी भले प्रोग्राम एस एन अली बुक्टी हमारे साथ मौजूद है लाड़काना का तवा से प्रोग्राम उदो पे भांजो मोहब्बतू आए. और अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं, मेरी मम्मा और बहनें हैं आपके टॉपिक का आंसर. ओके जी ओके. नदीरी कहती हैं कि ओ मैडम शो जल्दी जल्दी नहीं हुआ, आप लेट आई हैं. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और मैं वही सोच रही थी. अच्छा उनका अलावा अब्दुल रजाक कहते हैं, आप हमारी कमेंट शामिल, बिल्कुल जी सबके कमेंट शामिल होते हैं. और अगर ये जो लोग शिकायतें करने बैठ जाते ना कि हमारी कमेंट नहीं पढ़ती, तो सच में दिल करता है कि उनके ना ही पढ़ती. बात उनकी सच तो हो ना, वो सच तो बोले ना.

अच्छा ऐसे कहते थदो बाकी हकीकत थदो पानी वाणी प्यारे उस बेचारे के अच्छा नदड़ी जेको आ वो थादल भी पिए शायद वो गिलास रेस मिलाए न अच्छा हजार खान भाई तमा भी गाने की फरमाइश कई शमन जो गानो हलाइना सिं ठीक है अच्छा फहीम शेख कहते हैं मुझको मिल गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम अभी इस्तेमाल करूंगा क्या बात है इस्तेमाल कीजिएगा गुलाम अकबर शर्म हमारे साथ मौजूद है भाई जान खुशामदीद कहते हैं आपको और हजार भाई कहते हैं टॉपिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा सॉरी नहीं बता सकता टॉपिक के ऊपर क्या बात है इतना सीक्रेट है ओके

हाँ भाई मोहब्बत से बाज नहीं आएंगे, जान जाएगी और क्या होगा, लेकिन खूबसूरती जो है ना वो भी हासिल करते रहिए और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती आपको मिल जाएगी वो वाली जो हमेशा आपके साथ रहने वाली है. तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए. आपका हमारा साथ प्रोग्राम है पूरी पूरी 3 बजे तक का है. ये प्यारी प्यारी सी बातें आप लोगों के साथ कंटिन्यू करेंगे जनाब. यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं. तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए.

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यूनिट्स बनाए, सड़कों पर आने का वक्त आ गया है, एहतजाजी तहरीक के कॉल देने का वक्त आ गया है और एमकेएम पाकिस्तान उसके लिए अवाम से राबते में है। अवाम

0: अमीर टाइम अफाक हवाले करण जो मुतालबो करे छो। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे एम क्यू एम जे फारूक सतार चयो त पीपल्स पार्टी 2022 में एम क्यू एम सां वाइदो कयो हो जंहिं ते अञा ताईं अमल नाहे कयो वियो। सूबे में आइन खां मथां हिकमत अमली हुकूमत हली रही आहे। गवर्नर राज लॻाइण जो नथा चऊं। रिफंडम करायो वञे। कराचीअ खे वफ़ाक हवाले करण लाइ इंतज़ामी यूनिट ठाहियो वञे। असांजे रस्तनि ते अचण जो वक़्तु अची वियो आहे। तयारी करियूं पिया। सिंध जे सीनियर वज़ीर कराची खे वफ़ाक हवाले करण वारे एम क्यू एम जे मुताबिक़ खे सियासी ब्लिक ब्लिक करार ॾेई छॾियो। फारूक सतार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रदियामली ते सीनियर सूबाई वज़ीर शर्दील राम मेमण चयो त एम क्यू एम अॼु बि शॉर्टकट वारी सियासत ते यकीन रखे थी। वफ़ाकी मुदाख़लत जहिड़ा मामला मुतहदा जी सियासत ब्लिक ब्लिक जो सबूत आहिनि। अवामी मेडल 1973 जो आइन ऐं सिंध का तजुर्बेकार न आहे। फारूक सतार यादि रखे त अवाम पीपीअ खे वाज़े मेडल ॾिनो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर चेहरो पंहिंजी अलॻि सुञाणप रखे थो ऐं हर सुञाणप खे घुर्जे ख़ास ख़्याल। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम कंबाइंड वाइटनिंग फार्मूला डे एंड नाइट क्रीम सां गॾु अव्हां जी रोज़ानी स्किन केयर रुटीन जो हिसो। नरमी जो एहसास, ताज़गी जो एतमाद ऐं केयर जेका हर ॾींहुं अव्हां सां गॾु हुजे। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम खूबसूरतीअ जो एतमाद।
3: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-55-69

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 and 0242460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-35-92-120।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा
2: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधाए।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301399-2836।

ताकि आप लोगों की खूबसूरतियां हमेशा आपके साथ रहें और हमेशा आप ग्लो करते रहें। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम जो है वो आप लोगों तक स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ या फिर कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं। तो तमाम तरह सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को अब बताया जाएगा, बिल्कुल जी, पहले मैंने आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, सो अभी आपको बताया जाएगा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, उन लोगों को बताएंगे जो लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं या पहले से इस्तेमाल करते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी है और फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इसे तैयार किया गया है। ये मेडिकेटेड है जनाब, आप इसे आराम से तसल्ली से इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि हमारा दिल जो होता है ना वो किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले जो ना थोड़ा सा घबरा रहा होता है कि भाई पहला जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बुरा रहा है। तो सूरत हाल में अगर आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है तो आप इसे बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है और डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। और सबसे बेहतरीन बात कि ये विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फार्मूलेशन इसके अंदर ऐड किए गए हैं। और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है जनाब, जो जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम, मुलायम और तरोताजा रखने में मदद देती है। और इसी के साथ साथ बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपकी जल्द जो है वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है, चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब जितनी भी सारी चीजें वो आपकी जल्द को फ्रेश एहसास देती है और खूबसूरती में इजाफा करती है। रोजाना इस्तेमाल आपकी जल्द को कुदरती निखार और खूबसूरती, चमक और जो है ना आपकी स्किन को बेहतरीन सा ब्यूटी सा निखार देने के लिए है। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको मिल रहा है डी स्किन फेस वॉश। क्या बात है जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेली नहीं, इसके साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल करेंगे जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। इसका मकसद और मतलब ये होता है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन फेस वॉश तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी स्किन क्लीन रहेगी। ये तमाम अगर चीजें आपकी स्किन के ऊपर नहीं है और आप चाहते हैं कि ये तीन जो चीजें हैं हमारी स्किन के अंदर अवेलेबल हों तो आप डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए, आप डेली अपना फेस वॉश कीजिए 2 से 3 मरतबा, 3 से 4 मरतबा, 4 से 5 मरतबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये चीजें बढ़ जाती है ना, हमेशा कहते ना, जब कुछ लोगों को ये वाकई मैंने देखा है, बड़ा ये क्रेज होता है कि अगर आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो होती है ना वो आप बढ़ा देते हैं, यानी कि हम जितनी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा कोई सी नहीं होता, हमेशा जो है ना वो लिमिट में आप चीजों का यूज किया करें। जैसे आप ज्यादा हद से ज्यादा खाना नहीं खा सकते, वैसे ही आप अपनी स्किन को हद से ज्यादा जो ना प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, उससे भी नुकसानदार जो होते हैं ना असरात आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं। तो बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें, आपकी खूबसूरती आपके पास पास होगी और आप हमेशा खूबसूरत ही खूबसूरत रहेंगे। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं, साथ में डी स्किन फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए, बिस्मिल्लाह लगाइए, सदा लगाइए। और अगर अपने एरिया के अंदर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595 बूढ़ी 315।

क्या बात है. चनेसर थेबू हमारे साथ मौजूद हैं. चनेसर थेबू आपको खुश आमदीद कहते हैं. अमजद अली सुमरू हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून. और चाचा खालिद कहते हैं मुझे फहीम शेख ने डी स्किन क्रीम का फेस वॉश TCS कर दिया है फ्रॉम लाड़काना, गुड बॉय. क्या बात है, रियली ये तो अच्छी बात हो गई. चले एक आध जो है ना आप AM अंसारी को भी भेज दीजिए, वो भी बड़ा जो है ना वो उनका दिल है कि मैं लगाऊं, लेकिन उनके पास जो है ना वो समझ रहे हैं. तो उनको भी भेज दीजिएगा. और वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया खुशामदीद. और उसके अलावा मुजाहिद कहते हैं कि अल्लाह रे दो आपने मुझे बुढ़ा बोला. मैंने तो नहीं बोला, मैं किसी को बुढ़ा नहीं बोला, मैं तो चाचे को भी नहीं कह रही. आपकी उम्र बड़ी हो चुकी है भाई, मेरी नजर में जितने लोग हैं वो सब मेरी उम्र के हैं. क्या होता है, एज बस सिर्फ नंबर होते हैं और कुछ नहीं. और उसके अलावा निदड़ी कहती है कि ऐसे सॉन्ग से हाँ भाई सुने गाने. और उसके अलावा AM कहते हैं मैं भी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहता हूँ पर हाय रे गुर्बत. क्या ही कर सकते हैं. और अमजद अली सुमरो क्या कहते हैं फ्रॉम सालेह पट. ओके जी, ओके भाईजान को खुशामदीद कहा जाता है. और उसके अलावा हैं जी निदली कहती गर्मी की वजह से वाकई गुस्सा ज्यादा आता है, प्यार से बात करना मुश्किल हो गया है. हाँ जी ये तो है. और गर्मी में ना वाकई ये आहे थियो तो सभी के कावड़ अचे तवा के वेंदी हूँ अगर मां तव्हांजो गानो न हलायां तो. इन लाइ मां अॼु सोचियो त सभिनी सां गाना हलाईंदा.

very decisive, lay decisive. अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि अदा मेरे सवाल का जवाब है आपके पास. औरत अगर सीधी हो तो उसको गाय कहते हैं, अगर मर्द सीधा हो तो उसे बिल्कुल ये है, मैंने भी सुना है. और ये नाइंसाफी है सरासर मर्दों के साथ, तो मैं नहीं कहती, बाकी लोग जो कहते हैं उनको भी मना करती हूँ, मत बोला करें ऐसा. ये वाकई सरासर जो है ना वो गलत है. और उसके अलावा इसका जवाब तो खैर यही हो सकता है कि जो खुद होते हैं वो दूसरों को भी वही समझते हैं. अच्छा अब्दुल अहद अबासी मेरे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. अच्छा खैरपुर लग कांदरा खां तमासो ने प्रोग्राम दो पया भाजू मोहब्बत हूं आए वेलकम टू था तमा के दी बुद्ध कुछ में कुमधा जा सूर दरदा सलवन जानी. अच्छा अब्दुल अहद अबासी तमा के चाहू था खुश आमदी तमा गाने जी फरमाइश किया, मैं कोशिश किया दी तमा चो कानो भी हलाइंदा सी. बिल्कुल जी, तुम्हारे अगर करीबी जनरल स्टोर थे तुम्हारे गोठन में तुम्हारे एरिया में वाइटिश प्रोडक्ट्स हुजन या फिर डी स्किन प्रोडक्ट्स हुजन अगर न था तुम इस्तेमाल करे सको, वजह इया आहे त तुम्हारे एरिया में नथो मिले, तो पोई तुम छा कंदा, तुम डायल कंदा 03157990595. ही नंबर आहे जेको तुम डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था. अच्छा मोहम्मद ताहिर लुंड भा तुम्हारा से सगर मौजूद आयो, ठीक है तुम्हारी फरमाइश जो गानों भी हलाने की कोशिश करना सी. और सनौला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम, ठीक है तामुदा की आयो ऐसन कहते हैं सच्ची बुदा कसम दई. मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. सऊदी अरबिया से आप हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहते हैं आप. अच्छा खुशी मोहम्मद खपरी भाई हमारे साथ मौजूद है सिटी. ओके जी वालेकुम अस्सलाम भाई जान, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए. हाँ बस मुझे गलत ही हुए सारे शरीर. ओके जी अब्दुल अहद लिखते हैं कि दुखायल दिलन जी दुआ भी मिलंदी अहद, जख्म कुछ आला भी होंदा. वाह वाह वाह.

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे सदरा मैं आपका शो जब भी सुनता हूँ तो आपका पंखा हो जाता हूँ, वो मेरा मतलब ये था कि आपका फैन हो जाता हूँ। वहीदा भी आपका शो सुन रही है, वहीदा और आप दोनों को वेलकम कहते हैं जनाब। और उनके अलावा जी निदड़ी कहती है कि सही है। अच्छा अंसारी साहब ये कि किसी से भी अब ताल्लुक नहीं एक तेरे सिवा, मैं आजकल तेरी उल्फत के इतकाफ में हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। उनका अलावा डाढ़ा बाबा डाढ़ा

भई रोअंदा न कयो, रोअंदा त तव्हांजी अखियुनि जे हेठियां जेको न हल्का पइजी वेंदा. असांखे ॾिसो केॾो तव्हांजो ख़्यालु आहे. रोअंदा न कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो अगरि तव्हांजी अखियुनि जे हेठां हल्का थी विया आहिनि. चमन न वीचारे खे बि चऊं था बाबा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, तव्हां ॾाढो रुनायो त तव्हांखे ॾाढा हल्का पइजी विया हूंदा. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, उन सां गॾु डी स्किन फेस वॉश बि लॻायो, जीअं तव्हांखे परफेक्ट वारी ख़ूबसूरती मिली वञे. अच्छा मोहम्मद ताहिर भाई, कहते हैं आजकल सच्चे लोगों का कदर नहीं होता. हाँ जाई बुदा नहीं गाल खबर पई आज असंग. किशोर भाई कहते हैं तुम होती तो ऐसा होता, तुम ना होती तो वैसा होता, और अगर तुम नहीं होती तो खुदा की कसम बहुत पैसा होता. हाँ सही गाल.

अच्छा बिलाल अली आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा। चेते मोहतरमा किथे वे हो तमा? ओ इते वे हो, ये सीट जका ना खाली पई थव, ओ हते वे रहो। अच्छा अच्छी वहां तो पोस्ट के लाइक एंड शेयर भी करना। हलो ठीक है, शजर अब्बास हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मदद मुसविर अब्बास लाशारी फ्रॉम राजी देरो किया भाती जी, राजी देरो वारा मानो बेसन ने प्रोग्राम में शामिल आए। मोहब्बतू मोहब्बतू। अच्छा ए मंसारी कहते ओ इते रखे से ओ इहा सिफारिश करायो मता असाते क्या सची वने ने। हां बिल्कुल, मां तो कोशिश कांदी ता तवा के मिली वने बी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। हां दिसू था ता ता ने मोकलंदा या सिर्फ मोहब्बत चाचे ताई होय ने। वैसे चंदा ना मानू मानू जो फर्क हुंदो आए, बिल्कुल यही गाल। अच्छा निधि कहती है मैंने नोट कर लिया तुमने अच्छा अच्छा 30 बार कहा, मैं अच्छा वाकई कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ। सही सही भी मैं बहुत मर्तबा बोलती हूँ। बिलाल कहते हैं देखा जाए तो आजकल जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज मोबाइल और गाड़ी है। अच्छा गाड़ी कौन सी? अच्छा वफा मुमताज अली कोसो में सुन रही हैं भाईजान, खुशामदीद खुशामदीद। अच्छा फहीम कहते हैं आप नंबर सिंधी में बताती हो तो अच्छा लगता है। मतलब मानन के सिंधी में नंबर जो ना समझ में ही कुछ मानू बेचारा मासूम आने सारे प्रोग्राम में जेके नंबर जो ना अगर बुधाई ने इंग्लिश में तो उनके समझ में ना ही दो उन्हें मानो जला थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ी असंखे भी तो जी हर को मानू जो फायदो वे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए पांजे एरिया में अवेलेबल कराए। सो अवेलेबल करायो बाबा। हजार भाई कहते हैं कि उसका एक मैसेज अच्छा कहती है उसका एक मैसेज रात को आता है और एक मैसेज सुबह को आता है, पता नहीं वो प्यार कर रहे हैं या दवाई दे रहे हैं। इस प्यार को क्या नाम दें समझ नहीं आ रहा।

अच्छा, दर्द दिल कहती है कि चंदा टॉपिक, हाँ मेरे पास बहुत कीमती चीजें हैं, मेरी फैमिली, दोस्त और तुम. क्या बात है, ना भी मारो लाए अहम आया. जिनके लिए होनी चाहिए उनके लिए तो नहीं हूँ. या वली गाला तांज लाया. जीशान राजपूत हमारे साथ मौजूद है. हेलो.

ऑर्गेनाइज प्रोग्राम आहे जनाब व्हाइटिश एंड टी स्किन ब्यूटी शो अमाजो पंजो प्रोग्राम आहे जेमे तमा असाके जॉइन कंदा आयो ओई तमा के खूबसूरती जो गाली बुधाईना आयो ए गालन सा गडो गड तमा के खूबसूरत थण वारा प्रोडक्ट भी बुधाईना आयो केड़ा प्रोडक्ट तमा लगाए करी तमा के खूबसूरती मिली सके थी पर सा गडो गड तमा असाके जॉइन कयो था ए फेसबुक वारा मानो पोस्ट के लाइक एंड शेयर कना हेलो बाबा ए इते टाइम थियो आए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठू था उनका पर वापसी जल्दी मोटी तमा नेटू था तमा करी न वंजो इते बैठा हो जो मा ओ ही वनी ओ ही मोटा सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग Whitish and the Skin Beauty Show is sponsored by Whitish Beauty Products and the Skin Beauty Products. Sunata raho and sunata.

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील महासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत।

ジオガレスババओके वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और चनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ साथ मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे. और साथ ही साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. ओके सो प्रोग्राम में आप हमारे साथ साथ

ओके जी, साथ साथ आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो जनाब जल्दी कीजिए। क्या सोच रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं? अभी तक अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपको इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते भी हैं और बताएंगे भी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती में जो है ना वो इजाफा लाती है। और हाँ, ये बात तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 2 दिनों में वाजे आपको नतज मिल रहे हैं, यानी कि बरातियों अगर तुम सिर्फ इस्तेमाल करना तो तक रिजल्ट मिलन जुकाना स्टार्ट थी वेंदो बिन रातन में तवा के ये जफान स्किन पाजी वीआईपी वीआईपी गुलाबी गुलाबी गोल आई ग्लोइंग ग्लोइंग नजर अचन शुरू थी वेंदी। तो तमाम भी टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सो जमे विटामिन ई बीट्स मौजूद आहे, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन आहे, तमाजे चेहरे जा डार्क सर्कल आन वे खत्म थी वेंदा, तमाजी स्किन ग्लोइंग थी वेंदी, ब्यूटीफुल थी वेंदी, मर्द मायूं सभी अण सगंदा। उनका अलावा एकड़ी मजी जी गाल है इनके राजे टाइम तमा इस्तेमाल कजो छो तो ये नाइट क्रीम आहे। आई भी मजी जी गाल त तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा गड डी स्किन फेस वॉश भी लगाए सगदा। आई डी स्किन फेस वॉश तमा लगायो को हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है, जो तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट कह है, तुम्हारी स्किन के मॉइस्चराइज कह है, तुम्हारी स्किन के क्लीन बनाई है।

ओके डाल के दे रही है 03157990595 बुड़ी 315 79 90 595 ही नंबर तब जैसे तुम्हारा राबतो करे इजीली पांच करीबी जनरल स्टोर से पांच गोठन में पांच एरिया में वाइटेश जा प्रोडक्ट हुजन या वरी डी स्किन जा प्रोडक्ट हुजन ही तमाम प्रोडक्ट तमा इजीली अवेलेबल कराए सको था सो अवेलेबल करायो जी ताकि काडे बाहर वणन जी जरूरत न पई बाबा सा फलाने सिटी वेंदासी शहर वेंदासी त वठी इंदासी तमा जे गोठ में मिलंदा तमा जे करीबी जनरल स्टोर से मिलंदा जी तमा के आसानी थी वजे

ओके जी, सो हमारे साथ हैं दादू खां, हैदरी फारूक, हैदर। मुझे जिंदगी में सबका अहमियत मुझे अबू जान रखंदो आहे। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम भाजी, शो जबरदस्त है, सॉन्ग सुनाए, फोजिया सुमरो जो हलंदी हलंदी तां सबर करे वे हो। इरम हमारे साथी, इरम कहती, ओ मेरी दिलबर दोस्त जानी सिदरा, जवाब है आप और मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी अबू। ओके, अच्छा हिकड़ी बी गाल भी तां के बुधाईंदम, तां इते सबर करे वेठा हो जो छडे न वंजो प्रोग्राम के। उहा ॻाल्हि मूंखे हाणे वेठे वेठे यादि अची वई, सो ॿुधाइणी आहे हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे, तव्हां हिते वेठा हुजो, काॾे न वञिजो जेसि ताईं मां न वञा। ओगरी चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं बेटा मेरे लिए आप और आपका शो अहम है। ओके, थैंक यू सो मच चाचा। अब्बास महर हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो अब्बास महर। और विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिदरा आप कैसी हैं बाजी, हम आपका शो बड़े शौक से सुनते

0: करते हैं।
1: ओके जी, शीला कुल का गाना मैंने लगाया, आपको अच्छा लगा होगा, आपने सुना और कहते हैं डेडिकेट यू और ड्राइवर नजीर सोलंगी, मंसूर सोलंगी, वहीद सोलंगी, आसिफ एंड मुबशिर सोलंगी जी नाले ठीका, और ये मौजूद है हवाई सिद्रा जी, गणेश चंद जो अच्छा गणेश चंद भाई पता नहीं हमें कहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं और कहते हैं वेलकम सलाम कहते हैं आपको, वालेकुम अस्सलाम जी। 78 मोरी से राजा हमीर चंद हैं, किशोर कुमार हैं, हीरा भाई हैं, सवाई लाल प्ले नूर जहां तेरे बिना यूं गहरा, चले मैं गाना लगाने की कोशिश करती हूँ अगर टाइम बच गया तो। और हैं सोनी कहती हैं आप ही मैं भी आ गई, आप ही अभी अभी अपने चलिए चलिए अच्छी बात है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अच्छा फौजी पठान खान खोसो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। अच्छा घणो खिलंदी आया तो चवंदा आहिनि माण्हू त एॾो छोथी खिले, न खिलंदी आहे त चवंदा आहिनि खिले छो न थी, मतलब हम जाएं तो जाएं कहां, हम करी तो करी क्या। हिकु ॻाल्हि ते त बीहो न, तव्हांजी सम्झ में नथी अचे मूंखे ॻाल्हि। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, टॉपिक नमाज इबादत माँ बाप और मोहब्बत, नाइस सॉन्ग मेरी। हाँ बोला करो जब होगा तब देखा जाएगा। और उसके अलावा कहती है मेरी अम्मी भी आपका शो सुन रही है, थैंक यू सो मच अम्मी जान, आपको वेलकम करते हैं, इन जा हवाला बुधंदा है ना केड़ी केड़ी गाल करने तांज लाइ थोड़ो मच्छर आया आपसे नहीं खबर पवे। अच्छा मुनव्वर अली मुगल हमारे सारे सॉन्ग काथे सखर काथे दादू कल परसों तो यो गानो हलायो हो। बशीर लगारी गोठ मीर खान लगारी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर कीअं आयो भा मसफा मजे में तां ॿुधाए कीअं आयो। और दादू खां मुबशिर हुसैन जतोई हिकु माण्हू जे सिर जे ख़ातिर मास्टर मंज़ूर जो गानो हलायो, हाणे त ही वारो गानो हली वियो, ऐं इहो गानो वरी सुभाणे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। और ये हमारे साथ हैं सिद्रा मेरा सॉन्ग नहीं चलाया ज़ीशान रोखड़ी का वफ़ा आबिद बिरोही सकरण से, ज़ीशान का गाना अभी आपको सुनाया आपने सुना होगा। गोठ उस्मान शर खान करीम बख्शर जैन अली शर शो तुम्हारा नाइस है, थैंक यू वेरी मच। एडम कह रही प्यारी आप ही गुस्सा नहीं नहीं आपके ऊपर नहीं निकालेंगे, बस कभी कभी आप ऐसी बातें कर देती हैं कि मुझे गुस्सा कुछ सवाया आ जाता है, लेकिन आप कोशिश किया वैसे आजकल आप अच्छे से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, बहुत शुक्रिया। ओके जी, सो मायरा भी हमारा शो सुन रही है, मायरा आपको भी वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। और जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं जना पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है, आप जितना शेयर करते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहता है।

0: अरे चाचा क्या बात है, आपने तो बड़ी लंबी प्लानिंग करके रखी हुई है। अच्छा है, अच्छा है, पसंद आया हमें।
1: सुन तो लो मेरी जान।
0: अच्छा फहीम कहते हैं सदरा आपने जिस भाई के बारे में कहा उसको क्रीम खरीद कर दूं, उसको बोलो मुझसे राबता करे, भेज दूंगा। बुद्धो था ये मंसारी। एस नारबाणी कहते हैं रंदो अन्यान जल्दी खत्म थी वेंदव, पंज पंज भेरा न लगाईंदा कयो सोप या फेस वॉश। ओ या गाल दिस सियाणा आयो न असां तव्हांजी बचत भी कराईंदा आहियूं। सो टे दफ़ा लॻाईंदा कयो ज्यादा से ज्यादा, घणो लॻाईंदा त वाकी जल्दी ख़तम बि थी वेंदव प्रोडक्ट, इहो बि तव्हां ज़हन में रखंदा कयो। अब्दुल अहद अबासी तव्हां शायरी मोकिली आहे, तव्हां लॻे थो शायर आहियो, सो मोहबतूं मोहबतूं प्रोग्राम ॿुधो पियो। अच्छा अमजद अली सुमरो बिल्कुल आप हमारे पुराने लिसनर हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा शजर भाई आपको खुशामदीद कहते हैं, साहिर का गाना आपको सुनाते हैं जी, आप सबर कीजिए जरा सा। वफा मुमताज अली कोसो मरसद मौजूद हैं, खुशामदीद आपको भी। अनमोल साथी मरसद मौजूद हैं, हेलो। अच्छा बिलाल कहते हैं कि टूटे हुए प्यालों में जाम नहीं आता, इश्क के मरीजों को आराम नहीं आता, दिल तोड़ने वाले ये क्यों नहीं समझते, टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता। बिल्कुल यार सही गाला है। और किशोर भाई कहते हैं लोग सब रिश्तों को एक ही नजर से क्यों देखते हैं, अरे भाई सब रिश्तों का एक ही एक अलग लेवल है और मेरे सब रिश्ते मेरे पर जान छिड़कते हैं। हाँ ये तो वैसे है, कुछ लोगों को ये लगता है कि वाकई लोग जो है ना वो सब उनको ना एक ही यानी कि कैटेगरी में रखा होता है, लेकिन हर एक इंसान का एक अलग अलग मकाम होता है, वो चीज उन्हें समझनी चाहिए। हजार खान भाई कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों को जोड़ता है और रूह को सुकून बख्शता है, ये जिंदगी को खूबसूरत बनाता है और हर रिश्ते को मजबूत करता है, मोहब्बत में कुर्बानी समझदारी और एतमाद शामिल होता है जो उसे पायदार बना देता है, ये एक ऐसा एहसास है जो वक्त के साथ गहरा होता जाता है और हर मुश्किल में साथ देता है। वाह वाह।

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना हमने सुना. एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक होने वाला है, और ये है जी फौजिया सुमरू की आवाज में गाना.

ओके जी यार, परदेसी भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एंड खुश आमदीद कहा जाता है आपको। सवाया मतलब ज्यादा, हाँ मैं कोशिश क्या थी ना तो मैं सिंधी मतलब कुछ सवाई गल आया समझो था तो सोई ना जी करी मैं हाँ नया नया लफ्ज सीखी आई है। अच्छा ये मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आप ही। सिदरा मुस्कान आई एम फादिली लाशारी बलोच जेंटलमैन ओएसटी सुनाओ सलाम टू ऑल लिसनर्स। हाँ मायू तांगे चाही सकांदी ता अगर हिन प्रोग्राम में तां जा गाना न हलन त वरी मथे प्रोग्राम में ता पानी फरमाइशू असांगे करे सको था सो तां जो कानो भी नेक्स्ट प्रोग्राम में हलाइंदा सी।

अच्छा ए मन सारी कहते हैं न वो कंपनी जो ना है वो भी तमाम आगे लिसनर आए ले ले क्या ही मसला है। और मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम दुबई कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिडो, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छा बिलाल कहती है असां 5 पैसनि जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठंदासीं। बिल्कुल बिल्कुल तव्हां वठिजो, मूंखे ख़ुशी थींदी त तव्हां 5 पैसनि जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठंदा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेली न वठिजो, तव्हां मतिलबु जेको आहे न डी स्किन फेस वॉश बि साण वठिजो, सही आहे? अच्छा दिलजान, दिलजान हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा अब्दुल अहद कहते हैं कि पंहिंजे दिलि मां निकितल लफ़्ज़नि जी माला पिरोइण जी कोशिशि कंदो आहियां। वाह वाह वाह वाह, शायर माण्हू वटि न लफ़्ज़नि जी कमी न आहे हूंदी। वाह वाह वाह वाह। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं।

अच्छा न टाइम असो प्रोग्राम जो बे प्रोग्राम जो है पंज बजे का वी छह बजे तीन यानी कि पूरे पंजे बजे असो प्रोग्राम स्टार्ट पूरे छह बजे खत्म पूरा घंटो असो प्रोग्राम हलो उन अंदर कोई भी कमर्शियल वगैरह न हों सो तुम असा ज्वाइन कर सो ठीक है अच्छा हाँ बिल्कुल तुम्हारी पोइट्रीज भी शामिल कदासी कोशिश या होंगी सभी तकरीबन फीडबैक शामिल प्रोग्राम रखी सो पर तुम पा डा काफ़ी सारी रश होंगी प्रोग्राम में खोड सारा मूँ हूँ सो सभी मैसेजेस रीड क्यों उनके अलावा शोनी कहती आप ही मैं तो इस टाइम पढ़ती हूँ चलें कोई बात नहीं कोशिश किया करें एक दो मैसेजेस करने की और थोड़ा सा शामिल होने की और उसके अलावा जो है यहाँ पर टाइम हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ले लें वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाकात मुंहिंजी थियण वारी आहे पूरे पंजे बजे सो पंजे बजे तव्हां मूंखे ज्वाइन कजो ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी ऐं को अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हाइजो जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे त उन लाइ माज़रत कयूं था पंहिंजो उहो हेॾो सॼो ख़्यालु रखंदा ठीकु आहे सो मोकिलाणी न आहे बाबू सिन सलामत सा सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय बाय लव यू ऑल

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हमें वापस की जाए
2: एमक्यू मकबरो बीहर कराची के इंतजामी यूनिट ठाए वफा हवाले करण जो मुतालबो कर छो मुतालबा तस्लीम न थे रस्तन से अचान की धमकी सिंध के गवर्नरशिप दियण जो भी मुतालबो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमक्यूएम के फारूक सतार पीडीएम के पे हुकूमती दौर में थियल अमल ना थो खुद मुख्तियार मकानी हुकूमत ना ठही नई जाली डोमिसाइल वा मसला हल थिया गवर्नर राज लगान जो ना चूं रिफेंडम कराया वे कराची के वफाक हवाले कर इंतजामी यूनिट ठाए वे असि रस्तन से अचान जो वक्त अची वो है आवाम से राबते में आयो वफाक के मुदाखलत करनी है तो हाँ करें मुदाखलत न करें। सिंध के सीनियर वजीर कराची के वफाक हवाले करे एमक्यूएम के मुतालबे के सियासी ब्लैकमेलिंग करार दई छो फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल दींदे सीनियर सूबाई वजीर शर्जीना मेमून एमक्यूएम अज भी शॉर्टकट वाली सियासत से यकीन रखे थी वफाकी मुदाखलत जड़ा मामला मुतहदा की सियासी ब्लैकमेलिंग जो सबूत हैं अवामी मैडेट 1973 जो आयन सिंध का तजुर्बे गाह ना है फारूक सत्तार याद रखे तो अवाम पीपीए के वाजे मैडेट दिनों है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर रायतुल्ला जो आखिरी रस्म जारी शहीद रायतुल्ला जो मड़ तेहरान की मस्जिद मुसल्ला में रखल अवाम पारा अलविदा जो सिलसिलो जारी शहीद रहबर के अलविदा चवण लाए हजारों की तादाद में शहरी तेहरान पहुंचल भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी शहीद रायतुल्ला खामनाई की जनाजे नमाज सुभाने अदा कई वी एक करोड़ मानून के शरीक थियण जो इम्कान सूमर ढी 6 जुलाई से तेहरान में मरकजी ताजियती इजमा मड़ 9 जुलाई से मशहद में मिट्टी माओ हवाले किया वो। शहीद आयतुल्ला खमनाई अजीम आलम ए अगवान हो शहीद सदाई सब्र ए साहब जो मुजाहरों कयो वजीर आजम शहबाज शरीफ आयतुल्ला खमनाई के भेटा पेश करे चयो आहे तो शहीद आयतुल्ला के रुगो ईरानी न पर किरुणे मुसलमान के अजीम अगवान तौर याद कंदा पाकिस्तान ए ईरान बाहर इस्लामी मुल्क आन एक बे सा हर हाल में गड रहंदा।
3: We gave him a week off for a funeral because we're nice.
2: खमनाई की आखिरी रस्मन ला ईरान के हफ्ते की मोकल दिनी है ईरान अमेरिका से ठाक करण बेताब है दिल ला मरी रो है अमेरिकी सदर ट्रंप है तो अमेरिका ईरान के अगूणे सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्मन ला गाल रोको है अमेरिका वेंजुला के एक दिन में शिकस्त दिनी ईरान के भी हारा है ईरान मीहर आबाद थे चाहे तो असा सुठा मानू आयो ईरान के अगूणे सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्मन ला हफ्ते की मोहलत दिनी है। जंग बाद हालतू तब्दील थी चुकू हैं अमेरिका की हकीकतू तस्लीम करनी पवंदू तेहरान में उज़्बक हमनसब से मुलाकात दौरान गालाइंदे मोहम्मद बाकर कालीबाद है तो अपने हुरमस ईरान ए ओमान के गड़ियल इंतजाम का बेहतर नतीजा निकरंदा ट्रांजिट के भी बेहतर बणाइंदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्किया में व्यापार सनतकार से मुलाकातू शहबाज शरीफ पारा तुर्क सिणपकार के पाकिस्तान में सिणप करण की दावत तुर्क सिणपकार पारा पाकिस्तान में मुआशी सुधार की सारा तुर्क सिणपकार पारा पाकिस्तान में सिणपकारी बधाने की खातरी कराई वही।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569 0300-3583-569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: गवर्नरशिप हमें वापस।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: वालेकरण जो मुतालबो करे छियो, मुतालबा तस्लीम न थण ते रस्तन ते अचण जी धमकी दे छरी। सिंध जे गवर्नरशिप जो जण जो मुतालबो, कराची में प्रेस क्लब कॉन्फ्रेंस कंदे एमक्यूएम जे फारूक सतार चयो त पीडीएम जे पहिरीं हुकूमती दौर में थियल मुआदे ते अञा ताईं अमल नाहे थियो। ख़ुदि मुख़्तियार मकानी हुकूमत नाहे ठही, नई जाली डोमिसाइल वारा मसला हल थिया आहिनि। गवर्नर राज लॻाइण जो नथा चऊं, रेफरेंडम करायो वञे, कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण लाइ इंतिज़ामी यूनिट ठाहियो वञे। असांजे रस्तनि ते अचण जो वक़्तु अची वियो आहे, आवाम सां राब्ते में आहियूं, वफ़ाक़ खे मुदाख़लत करणी आहे त हाणे करे, पोइ मुदाख़लत न करे। सिंध जे सीनियर वज़ीर कराचीअ खे वफ़ाक़ी हवाले करण वारे एमक्यूएम जे मुतालबे खे सियासी ब्लैकमेलिंग करार ॾेई छॾियो। फारूक सतार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रदे अमल ॾींदे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जी रीना मेमुन चयो त एमक्यूएम अॼु बि शॉर्टकट वारी सियासत ते यकीन रखे थी। वफ़ाक़ी मुदाख़लत जहिड़ा मामला मुतहदा जी सियासत ब्लैकमेलिंग जो सबूत आहिनि। अवामी मेडिट 1973 जो आइन ऐं सिंध खां तजुर्बेगान आहे। फारूक सतार यादि रखे त अवाम पीपीए खे वाज़े मेडिट ॾिनो आहे। ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनाई जो आख़िरी रस्मूं जारी। शहीद आयतुल्ला जो मड़ तहरान जे मस्जिद मुस्लिम में रखियल। अवाम पारां अलविदाई जो सिलसिलो जारी। शहीद रहबर खे अलविदा चवण लाइ हज़ारनि जी तइदाद में शहरी तहरान पहुतल। भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी। शहीद आयतुल्ला खमनाई जनाज़े जी नमाज़ सुभाणे अदा कई वेंदी। 1 करोड़ माण्हुनि जे शरीक थियण जो इम्कान। सूमर ॾींहुं 6 जुलाई ते तेहरान में मर्कज़ी ताज़ियत इजतमा थींदो। मड़ 9 जुलाई ते मस्जिद में मिटी माउ हवाले कयो वेंदो। शहीद आयतुल्ला खमनाई जी अज़ीम आलम में अॻवाण हो। शहीद सदाईं सब्र ऐं साहप जो मुज़ाहिरो कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ आयतुल्ला खमनाई खे भेटा पेश कंदे चयो आहे त शहीद आयतुल्ला खे रुगो ईरानी न पर किरणे मुस्लमान खे अज़ीम अॻवाण तौरु यादि कंदा। पाकिस्तान ऐं ईरान ॿाहिरि इस्लामी मुल्क आहिनि, हिक ॿिए सां हर हाल में गॾु रहंदा।
3: We gave him a week off for a funeral because we're nice.
2: Khamenei ji aakhir rasman la Iran ke hafte ji mokal dini aahe. Iran America sa tha karan la betab aahe and deal la mare payo. American sadar Trump chayo aahe ta America Iran je gune supreme leader ja aakhir rasman la garan ke rokyo aahe. America Venezuela ke ekri mein shikas dai Iran ke baharayo aahe. Iran bihar abad thyan chahe to asa sutha maanu aayo. Iran ke gune supreme leader ja aakhir rasman la hafte ji mohlat dini aahe. आर्म हुर्मज़ खिते जे ॿाहिरि वारनि कुवतनि लाइ फ़ौजी ताक़त ॾेखारण वारी मुज़ाहिरे जो हंधु नाहे। ईरान हिकु ज़िमेवार ताक़त ऐं आर्म हुर्मज़ जी सलामती जो ज़ामिन आहे। ईरान जे नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त आर्म हुर्मज़ में ग़ैर मुल्की फ़ौजी कुवत खे भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। बहरान पैदा करण लाइ मुहिम जोई कंदड़नि खे नतीजा भुगणा पवंदा। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो तुर्कीअ में वापारनि ऐं सनतकारनि सां मुलाक़ातूं। शहबाज़ शरीफ़ पारां तुर्क सिणपकारनि खे पाकिस्तान में सिणपकारनि जी दावत। तुर्क सिणपकारनि पारां पाकिस्तान में मुआशी सुधारनि जी साराह। तुर्क सिणपकारनि पारां पाकिस्तान में सिणपकारी वधाइण जी ख़ातिरी कराई वई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल खिते खे तबाही खां बचायो। पाकिस्तान दुनिया में अमन जे अलमबरदार मुल्क तौरु उभरियो आहे। सियालकोट में तकरीब खे ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो त पाकिस्तान गुज़िरियल 2 सालनि दौरान वॾियूं कामयाबियूं माणियूं आहिनि। पाण खां वॾी दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी हक़ वारे जंग में कामयाबी खे दुनिया में तस्लीम कयो। अमन वारे महाज़ ते बि पाकिस्तान वॾी कामयाबी माणी। पाकिस्तान दुनिया में इज़त ऐं वक़ार माणियो। भारत पाकिस्तान जे बचियल पाणी ते धार हणण जी कोशिश करे रहियो आहे। भारत पाणी रोकियो त जंग थींदी, रियासत क़ौम खे प्यासो मरण न ॾींदी। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सिंध जे आपाशी वारे वज़ीर जाम खान शुरू चयो आहे त पाकिस्तान सुदतास मुआदे अमन लाइ कयो हो। उन वक़्तु भारत पाकिस्तान जो पाणी बंदि करण जी साज़िश करे रहियो आहे। पाणी बंदि थियो त सभ खां वधीक मुतासिर सिंध थींदी। भारत पाणी रोकण जी ग़लती कई त पाकिस्तान वटि जंग खां सवाइ ॿियो गो गस नाहे। लाहौर में ॿिनि परॾेही औरतुनि जी अगवा ऐं ज़्यादती वारे केस में छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। परॾेही औरतुनि पारां अदालत में ॾिनल बयान जा तफ़सील साम्हूं अची विया। स्पेन वासण स्टेड गब्रीला रूबेंसन अदालत में बयान ॾींदे चयो त अगवाबाद रज़ा डार वटन आयो ऐं कंप्यूटर ऐं पैसनि बाबति पुछा कई। असांखां पासवर्ड ऐं कंप्यूटर बाबति पुछंदा रहिया। तशद्दुद करण सां गॾु केतिरा ई भेरा जिन्सी तशद्दुद जो बि निशानो बणायो वियो ऐं चयो वियो त पैसा ॾियण बाद ई ज़िंदा वञी सघो था। केस में गिरफ़्तार जवाबदार रज़ा डार नायब वज़ीर आज़म जो ॾोहिटो आहे। छठी में पाणी कोट शिदत अख़्तियार करे वई। आबादगारनि जो क़ौमी शाहराह ते धरणो। छठो ऐं आसपास जे इलाक़नि में पाणी शदीद कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतजाज कयो। जामवा ऐं ॿियनि शाखनि में पाणी छॾण जो मुतालबो। जाम नवाज़ अली में दिलोर माइनर जे पुठड़ी जे आबादगारनि जो पाणी कोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो ऐं धरणो। दोदापुर भरिसां बेगारी केनाल मां निकिरंदड़ शाखनि जे आबादगारनि जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज। आबादगारनि पारां ज़रई पाणी जी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। कुंडरी में मुबैना तौर ते ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि ॿ सगा ॿाहिरि फौत। ॻोठु हयात गपनो में खाधो खाइण सबबि 10 साल अली हसन ऐं 12 साल मोहम्मद हसनैन आराई जी हालति ख़राब थी वई। अली हसन तालके अस्पताल में दम ॾिनो। मोहम्मद हसनैन हैदराबाद मुंतकिल करण दौरान फौत थियो। पोती निगरनि जे नाने असगर जी हालति ख़राब। पोती निगरनि जे वारसनि जो चवण आहे त निंगर राति मानी खाई सुता हुआ। सुबुह जो सदन हालति ख़राब थी। थी सघे थो त खाधे में का ज़हरीली शइ किरी हुजे, जंहिं सबबि ॿार फौत थिया आहिनि। खैरपुर में घर मावर जो गोली लॻल लाश हथ। 35 वारे इलाइक़े में घर मां सपना दायो जो गोली लॻल लाश मिलियो। पुलिस जो चवण आहे त वाकिए जी जांच करियूं पिया। खिपरो जे अछड़े थर मां नामालूम शख़्स जो लाश हथ। सुञाणप न थी। पुलिस जी जांच जारी। फुटबॉल जे आलमी दंग जो नॉकआउट मरेलो जारी। दिफ़ाई चैंपियन अर्जेंटीना कैंप वर्दी खे ॿिनि गोलनि जी भेट में हिकु गोल तां शिकस्त ॾेई प्री क्वार्टर फाइनल में पहुची वई। कोलंबिया जी टीम घाना खे ॿुड़ी जी भेट में हिकु गोल तां शिकस्त ॾेई ॿिए मरेले में पहुची वई। मिस्र जी टीम में नॉक आउट मरेले में ऑस्ट्रेलिया खे शिकस्त ॾेई पहिरियों भेरो आलमी इवेंट जे क्वार्टर फाइनल में पहुची वई। मिस्र में फुटबॉल जे मैदान जो टीम जी कामयाबी ते जशनु।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0302018-00003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेहराबपुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहराबपुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमक्यूएम जे फारूक सतार चो त पीडीएम जे पहिरीं हुकूमती दौर में थियल मुआदे ते अञा ताईं अमल नाहे थियो। खुद मुख्तियार मकानी हुकूमत नाहे ठही, नई जाली डोमिसाइल वारा मसला हल थिया आहिनि। गवर्नर राज लॻाइण जो नथा चऊं, रेफरेंडम करायो वञे, कराची खे वफ़ाक हवाले करण लाइ इंतज़ामी यूनिट ठाहियो वञे। असांजे रस्तनि ते अचण जो वक़्तु अची वियो आहे, आवाम सां राब्ते में आहियूं, वफ़ाक खे मुदाख़लत करणी आहे त हाणे करे, पोइ मुदाख़लत न करे। सिंध जे सीनियर वज़ीर कराचीअ खे वफ़ाक़ी हवाले करण वारी एमक्यूएम जे मुतालबे खे सियासी ब्लैकमेलिंग करार ॾेई छॾियो। फारूक सतार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रद अमल ॾींदे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जी रीणा मेमुण चयो त एमक्यूएम अॼु बि शॉर्टकट वारी सियासत ते यकीन रखे थी। वफ़ाक़ी मुदाख़लत जहिड़ा मामला मुतहदा जी सियासत ब्लैकमेलिंग जो सबूत आहिनि। अवामी मेडिट 1973 जो आइन ऐं सिंध खां तजुर्बेगान आहे। फारूक सतार यादि रखे त अवाम पीपीए खे वाज़े बेडिट ॾिनो आहे। ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनाई जो आख़िरी रस्मूं जारी। शहीद आयतुल्ला जो मड़ तहरान जे मस्जिद मुस्लिम में रखियल। अवाम पारां अलविदाई जो सिलसिलो जारी। शहीद रहबर खे अलविदा चवण लाइ हज़ारनि जी तइदाद में शहरी तहरान पहुतल। भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी। शहीद आयतुल्ला खमनाई जनाज़े जी नमाज़ सुभाणे अदा कई वेंदी। 1 करोड़ माण्हुनि जे शरीक थियण जो इम्कान। सूमर ॾींहुं 6 जुलाई ते तेहरान में मर्कज़ी ताज़ियत इजतम थींदो। मड़ 9 जुलाई ते मस्जिद में मिटी माउ हवाले कयो वेंदो। शहीद आयतुल्ला खमनाई जी अज़ीम आलम में अॻवाण हो। शहीद सदाईं सब्र ऐं साहु जो मुज़ाहिरो कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ आयतुल्ला खमनाई खे भेटा पेश कंदे चयो आहे त शहीद आयतुल्ला खे रुगो ईरानी न पर किरणे मुस्लमान खे अज़ीम अॻवान तौरु यादि कंदा। पाकिस्तान ऐं ईरान भाइर इस्लामी मुल्क आहिनि, हिक ॿिए सां हर हाल में गॾु रहंदा।
2: We gave him a week off for a funeral because we're nice.
1: खमनाई जी आख़िरी रस्मनि लाइ ईरान खे हफ़्ते जी मोकल ॾिनी आहे। ईरान अमरीका सां ठाह करण लाइ बेताब आहे ऐं डील लाइ मरे पियो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीका ईरान जे अॻूणे सुप्रीम लीडर जे आख़िरी रस्मनि लाइ ॻाल्हियुनि खे रोकियो आहे। अमरीका वेनेज़ुएला खे 1-1 में शिकस्त ॾेई ईरान खे बि हारायो आहे। ईरान ॿीहर आबाद थियण चाहे थो, असां सुठा माण्हू आहियूं। ईरान खे अॻूणे सुप्रीम लीडर जे आख़िरी रस्मनि लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। आर्म हुर्मज़ खिते जे ॿाहिरि वारनि कुवतनि लाइ फ़ौजी ताक़त ॾेखारण वारी मुज़ाहिरे जो हंधु नाहे। ईरान हिकु ज़िमेवार ताक़त ऐं आर्म हुर्मज़ जी सलामती जो ज़ामिन आहे। ईरान जे नायब परॾेही वज़ीर क़ासिम ग़रीब आबादी चयो आहे त आर्म हुर्मज़ में ग़ैर मुल्की फ़ौजी कुवत खे भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। बहरान पैदा करण लाइ मुहिम जोई कंदड़नि खे नतीजा भुगणा पवंदा। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो तुर्कीअ में वापारनि ऐं सनतकारनि सां मुलाक़ातूं। शहबाज़ शरीफ पारां तुर्क सिणपकारनि खे पाकिस्तान में सिणपकारनि जी दावत। तुर्क सिणपकारनि पारां पाकिस्तान में मुआशी सुधारनि जी साराह। तुर्क सिणपकारनि पारां पाकिस्तान में सिणपकारी वधाइण जी ख़ातिरी कराई वई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल खिते खे तबाही खां बचायो। पाकिस्तान दुनिया में अमन जे अलमबरदार मुल्क तौरु उभरियो आहे। सियालकोट में तकरीब खे ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो त पाकिस्तान गुज़िरियल 2 सालनि दौरान वॾियूं कामयाबियूं माणियूं आहिनि। पाण खां वरी दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी हक़ वारी जंग में कामयाबी खे दुनिया में तस्लीम कयो। अमन वारे महाज़ ते बि पाकिस्तान वॾी कामयाबी माणी। पाकिस्तान दुनिया में इज़त ऐं वक़ार माणियो। भारत पाकिस्तान जे बचियल पाणी ते धार हणण जी कोशिश करे रहियो आहे। भारत पाणी रोकियो त जंग थींदी, रियासत क़ौम खे प्यासो मरण न ॾींदी। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सिंध जे आपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शुरू चयो आहे त पाकिस्तान सुदतास मुआदे अमन लाइ कयो हो। उन वक़्तु भारत पाकिस्तान जो पाणी बंदि करण जी साज़िश करे रहियो आहे। पाणी बंदि थियो त सभ खां वधीक मुतासिर सिंध थींदी। भारत पाणी रोकण जी ग़लती कई त पाकिस्तान वटि जंग खां सवाइ ॿियो गो गस नाहे। लाहौर में ॿिनि परॾेही औरतुनि जी अगवा ऐं ज़्यादती वारे केस में छिड़काईंदड़ इंकशाफ़। परॾेही औरतुनि पारां अदालत में ॾिनल बयान जा तफ़सील साम्हूं अची विया। स्पेन वासण स्टेड गब्रीला रुबेंसन अदालत में बयान ॾींदे चयो त अगवाबाद रज़ा डार वटनि आयो ऐं कंप्यूटर ऐं पैसनि बाबति पुछा कई। असांखां पासवर्ड ऐं कंप्यूटर बाबति पुछंदा रहिया। तशद्दुद करण सां गॾु केतिरा ई भेरा जिन्सी तशद्दुद जो बि निशानो बणायो वियो ऐं चयो वियो त पैसा ॾियण बाद ई ज़िंदा वञी सघो था। केस में गिरफ़्तार जवाबदार रज़ा डार नायब वज़ीर आज़म जो ॾोहिटो आहे। धरती में पानी कोट शिदत अख्तियार करे वही आबादगारन जो कौमी शराह धरनो छठो ए आसपास के इलाकन में पानी शदीद कोट खिलाफ आबादगारन एहतजाज कर जामवा अबियन शाखन में पानी छड़न जो मुतालबो जाम नवाज अली में दिलोर माइंडर के पुछड़ी के आबादगारन जो पानी कोट खिलाफ मुजाहरो धरनो दुदापुर भरसा बेगारी केनाल में निकलदड़ शाखन के आबादगारन जो पानी कोट खिलाफ एहतजाज आबादगारन पारा जरई पानी की खोट खत्म करण जो मुतालबो कुंडरी में मुबैना तौर से जहरीलो खाधो खाने सबब बस सगा भायर फौत गोठ हयात गपनो में खाधो खाने सबब 10 साल अली हसन ए 12 साल मोहम्मद हसनैन आरई की हालत खराब थी वही अली हसन तालके अस्पताल में दम डिनो मोहम्मद हसनैन हैदराबाद मुंतकिल करण दौरान फौत थो पोती निगरन के नाने असगर की हालत खराब पोती निगरन के वारसन चवण है निंगर रात मानी खाई सुता हुआ सुबह जो सदन हालत खराब थी सके तो खाधे में का जहरीली शय कई हुए जैसे बार फौत थे खैरपुर में गर्म औरत जो गोली लगल लाश हथ पंजटी वाले इलाके में गर्म सपना दायो जो गोली लगल लाश मिलो पुलिस चवण है वाकई की जांच करूं पाया खिपरो के अछड़े थर में नामालूम शख्स जो लाश हथ सुणप न थी पुलिस की जांच जारी फुटबॉल के आलमी दंग जो नॉकआउट मरेलो जारी दिफाई चैंपियन अर्जेंटा
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-04372 ऐं 0242-460100।

0: सो या कंहिंखे थोरो हरास करे छॾणु या घणो हरास करे छॾणु, इन क़िस्म जे ऑफेंस खे असां नॉन कॉग्निज़ेबल या एनसी चवंदो. हाणे अचूं था एनसी. सो कॉग्निज़ेबल केसिस में एफ आई आर कटी वेंदी आहे, फस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. उहे ऑफेंसिस जी मां पहिरीं डेफिनेशन ॿुधाई. नॉन कॉग्निज़ेबल्स में अचंदा आहिनि एनसी. हाणे एनसी सां पर्पज़ इहो ई आहे, जेकी मां डेफिनेशन ॿुधाई, उहे एॾा सीरियस क़िस्म जा ऑफेंस न हूंदा आहिनि, पर पुलिस पोइ बि हुनखे पंहिंजे रिकॉर्ड में रखंदी आहे ऐं हुनखे मैजिस्ट्रेट जे साम्हूं पेश कंदी आहे. साईं हीअ रिपोर्ट आई आहे, अगरि मैजिस्ट्रेट चाहे त उन ते जेको आहे हिननि खे इजाज़त ॾेई करे उन माण्हूअ खे उहे चाहिनि त अरेस्ट करे सघनि था पिया ऐं उन जे लाइ एफ आई आर बि रजिस्टर करे सघनि था. सो जेके लेस लेवल जा जेके ऑफेंसिस हूंदा आहिनि त उनखे असां एनसी चवंदा आहियूं. बाद में उहे एफ आई आर जी शकल अख़्तियार करे सघनि था विद परमिशन ऑफ द
1: ठीक आहे एनसी खां बाद में ओके उनखे परमिशन ॾियणी मतलबु परमिशन वठणी आहे. ऑल राइट,
0: परमिशन लाज़मी.
1: सर, सीआरपीसी जो सेक्शन 154 एफ आई आर बाबति छा थो चवे?
0: एफ आई आर हुई मां ॻाल्हि कई त 154 ॿुधायो थो पियो असांखे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चवे थो त कोई बि माण्हू कहिड़े बि क़िस्म जो अगरि ऑफेंस ॾिठो आहे या क्राइम कंदे ॾिठो आहे या उन सां को इशू थियो आहे या मामिलो थियो आहे, चाहे उन सां पर्सनल इशू थियो हुजे या उन जे कंहिं फैमिली मेंबर सां थियो हुजे या उहो पाड़े में थींदड़ कोई बि अहिड़ी शइ आहे, को अगरि ॾोह वग़ैरह थियो आहे, उन उहो इंसिडेंट ॾिसी वरितो आहे, त उन जे बारे में पुलिस खे वर्बल या रिटन फॉर्म में काई बि एप्लीकेशन ॾेई करे या उनखे इंफॉर्मेशन ॾेई करे उहो उन ते एफ आई आर कटाए सघे थो. उनखे सम्झो फस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जेकी 154 में मेंशन थियल आहे.
1: ठीकु आहे. अच्छा सर, काइंड्स ऑफ एफ आई आर ते अगरि असां चऊं, नेम्ड एफ आई आर, अननेम्ड एफ आई आर, डिले एफ आई आर, एज़ वेल एज़ काफ़ी क्रॉस एफ आई आर बि हूंदी आहे, ज़ीरो एफ आई आर बि थी सघे थी, इन्हनि खे थोरो डिफाइन कयो.
0: इहे डिफरेंट काइंड्स आहिनि. हाणे इहे नॉर्मली तव्हांखे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स में न मिलंदियूं तव्हांखे.
1: अच्छा,
0: नॉर्मली लेवल ते न मिलंदियूं, पर छा आहे, इहे हिकु टाइप्स आहिनि, काइंड्स आहिनि, जेके एफ आई आर खे डिस्टिंग्विश कंदा आहिनि मेन एफ आई आर खां. जीअं पहिरीं मां एफ आई आर जी फस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तव्हांखे ॿुधाई, त हिन में जेको तव्हां लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो नेम्ड एफ आई आर, ऐं नेम्ड एफ आई आर जो मक़सदु इहो आहे त अक्यूज़ पर्सन जा जेके नाला आहिनि, कंप्लेन एंड अक्यूज़ पर्सन जा नाला ॿुधायो थो पियो त बाबा हिननि असां सां इहो ॾोहो कयो आहे, हिननि असां सां इहो जेको जुर्म कयो आहे. ॿियो आहे अननेम्ड, जेको तव्हां ॿियो नालो अननेम्ड एफ आई आर, इनखे चइबो आहे नामालूम अफ़राद.
1: ठीकु आहे,
0: ॾोहो त थियो, जुर्म त थियो, पर कयो कंहिं माण्हू जेके मतिलबु बाए फेस सुञाणे वेंदासीं अॼु या सुभाणे, जॾहिं की बि अगरि आइडेंटिफिकेशन परेड थींदी अंडर कानूनी शहादत, माण्हू त असां बाए फेस सुञाणे वेंदासीं, पर माण्हू जा नाला ख़बर न, उनखे चवंदा नामालूम अफ़राद. त ॾोहो थियो जहिड़े बि तरीक़े सां थियो या ॾिठो वियो, माण्हू जी ख़बर न आहे कंहिं कयो आहे, छा कयो आहे, कहिड़े कयो आहे, या ॿुधियो कंहिंखां इंफॉर्मेशन ॿुधी, साईं असां वियासीं इंसिडेंट ते वियासीं, हीउ मामिलो थियो, कंहिं कंहिंखे क़तलु करे छॾियो, पर असांखे माण्हू जी ख़बर न आहे कहिड़ा माण्हू हुया. उहे इन्वेस्टिगेशन डिफाइन कंदी त कहिड़ा माण्हू हुया, उहे कहिड़ा माण्हू इनवॉल्व थिया आहिनि. थर्ड हुयो तव्हां जेको पुछियो पिया त डिले एफ आई आर.
1: डिले एफ आई आर,
0: हाणे डिले एफ आई आर जो सीन, इहे रीज़न्स ईअं हूंदा आहिनि बाबर, की इंसिडेंट थी चुको आहे. जीअं अमूमन ॻोठनि में अगरि तव्हां ॾिसंदो या शहरनि में अगरि तव्हां ॾिसंदो त माण्हू कनेक्टिड आहिनि हिक ॿिए सां ॾाढो. सपोज़ कंहिंजे घर में चोरी थी थी वञे, या ॿुधियो कंहिंखां इंफॉर्मेशन ॿुधी, साईं असां वियासीं इंसिडेंट ते वियासीं, हीउ मामिलो थियो, कंहिं कंहिंखे क़तलु करे छॾियो, पर असांखे माण्हू जी ख़बर न आहे कहिड़ा माण्हू हुया. उहे इन्वेस्टिगेशन डिफाइन कंदी त कहिड़ा माण्हू हुया, उहे कहिड़ा माण्हू इनवॉल्व थिया आहिनि. थर्ड हुयो तव्हां जेको पुछियो पिया त डिले एफ आई आर.
1: डिले एफ आई आर,
0: हाणे डिले एफ आई आर जो सीन, इहे रीज़न्स ईअं हूंदा आहिनि बाबर, की इंसिडेंट थी चुको आहे. जीअं अमूमन ॻोठनि में अगरि तव्हां ॾिसंदो या शहरनि में अगरि तव्हां ॾिसंदो त माण्हू कनेक्टिड आहिनि हिक ॿिए सां ॾाढो. सपोज़ कंहिंजे घर में चोरी थी थी वञे, या ॿुधियो कंहिंखां इंफॉर्मेशन ॿुधी, साईं असां वियासीं इंसिडेंट ते वियासीं, हीउ मामिलो थियो, कंहिं कंहिंखे क़तलु करे छॾियो, पर असांखे माण्हू जी ख़बर न आहे कहिड़ा माण्हू हुया. उहे इन्वेस्टिगेशन डिफाइन कंदी त कहिड़ा माण्हू हुया, उहे कहिड़ा माण्हू इनवॉल्व थिया आहिनि. थर्ड हुयो तव्हां जेको पुछियो पिया त डिले एफ आई आर.
1: डिले एफ आई आर,
0: हाणे डिले एफ आई आर जो सीन, इहे रीज़न्स ईअं हूंदा आहिनि बाबर, की इंसिडेंट थी चुको आहे. जीअं अमूमन ॻोठनि में अगरि तव्हां ॾिसंदो या शहरनि में अगरि तव्हां ॾिसंदो त माण्हू कनेक्टिड आहिनि हिक ॿिए सां ॾाढो. सपोज़ कंहिंजे घर में चोरी थी थी वञे टीके, या कंहिं बि अहिड़ी शइ ते ॻाल्हाए छॾियो, त हाली उन जुर्म खे ईअं सम्झो त उनजी कोई बि जेकी इंफॉर्मेशन आहे पहिरीं, जेको अगरि ऑफेंस थियो आहे, ॾोह थियो आहे, या उहो जेको माण्हू विक्टम थियो आहे, या जेको अक्यूज़ पर्सन आहे, या जंहिं उहो ज़ुल्म कयो आहे, उनखे माना ईअं सम्झो हथीको करण जे लाइ या उनखे स्केप न थियण जे लाइ, त तव्हां कहिड़े बि जॻह ते वञी करे एफ आई आर कटाए सघो था. देन उन इन्वेस्टिगेशन थींदी, देन पुलिस छा कंदी, उन कंसर्न हद वटि कंसर्न जुरिसडिक्शन में वञी करे उन एफ आई आर खे ट्रांसफर करे छॾंदी. सो इहे कहिड़े बि हद में एफ आई आर

0: जी सघे थी कंहिं बि पर्टिकुलर जुर्म ऐं ॾोह जे लाइ, सपोज़ चाहे उहो पब्लिकली थिए या थ्रू मीडिया थिए, कंहिं माण्हू ॾिसी वरितो आहे तुंहिंजी एफ आई आर कटाए सघे थो पियो.
1: प्रोग्राम जारी आहे. लीगल कॉर्नर में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि ऐं टॉपिक आहे असांजो एफ आई आर, एज़ वेल एज़ तव्हां असांजे जॉइन बि करे सघो था. असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488. हींअर हलंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं, असां सां गॾु रहिजो.

0: चल की सर मस्त धरती
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज
2: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहो था जिते हो जेता
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीए जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-8196-851
1: छो परेशान आई
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: जस्टिस जो हिसो आ क्रिमिनल जस्टिस जो जडे हिसो आ त उन जो पेरो स्टे पी एफ आई आर आ अगर कोई वठे तो पियो त लाज़मी उन ते वॉच आउट थे न उन ते पॉलिसीज ठाई वजन बरहाल अड़ो को ना है
1: मतलब ही जेके असन के मानु बुधन पिया या दिसन पिया उनन के आ यो चंदा एफ आई आर जा पैसा को न
0: पैसा न हो
1: अगर को वठे पियो त उनन के छा करन गुरजे
0: वठे तो कंप्लेंट करन
1: के वठे
0: भाई जी वट डी आई जी सा वट एस एस पी सा वट एस पी वट जेके न जा हायर ऑफिशियल्स न उनन वट इन जी कंप्लेंट करन ठीक है ना तो कंप्लेंट कर निशानदगी कर पैसा था वा वन एंटी करप्शन कोर्ट खुली पी एंटी करप्शन ये इदारा खुलिया पियान सो इदार के थ्रू उन मतों जो है नो केस दाखिल कराए पा या कंप्लेंट दई पाया बरहाल एफ आई आर जहाँ पैसा
1: मांग के जहन में ये गाल भी थोड़ा रूमर्स एफ आई आर अगर अस पैसा ना दूँ तो असन जहाँ ना लगया वन इन पाया
0: पेरो डिपेंड करे तो अगर मिसाल पसंद जाए फर
1: मांजे
0: पेरो चयो जे मां चम द नैरेटिव जे मां चम नैरेटिव हाणे अधे भी हिकड़ी कॉल कई त साईं पोयां कॉल्स ई अचनि पयूं त असांखे पहिरियों निज़ाम में सिस्टम में जेको आहे न रिफॉर्म्स आणणा पवंदा रिफॉर्म्स इहे ई हूंदा तव्हांजा के मेरिट जेसिताईं मेरिट प्रिवेल न कंदी कॉम्पिटेंट माण्हू जेसिताईं मथे इदारनि में न ईंदा ऐं कॉम्पिटेंट माण्हू पंहिंजो रोल प्ले न कंदा तेसिताईं इदारनि में निज़ाम ई हलंदो रहंदो बहरहाल चवंदा आहिनि न त बहितर इहो आहे त अगरि कोई अहिड़ो हरकत करे थो पियो या पैसा वठण जी करे थो पियो या अगरि सेक्शन पंहिंजी मर्ज़ी ते हणाए थो या पूरो कंहिं बि कंप्लेनेंट जो नैरेटिव ई पूरो जो पूरो जेको वर्जन आहे वर्बली हुजे या रिटन फॉर्म में हुजे उहो वर्जन ई चेंज करे थो छॾे ऐं पंहिंजे मर्ज़ी जा सेक्शन हणे थो पियो त हुन जे लाइ एस पी एस पी साहिबु डायरेक्ट जेके बि हद जा एस एस पी आहिनि या जेके बि हद जा आहे डी आई जी साहिबु आहिनि उन्हनि वटि इहा डायरेक्ट कंप्लेन करनि त हे कंसर्न हद जो जेको बि एस एच ओ आहे या कंसर्न ऑफिसर आहे इहो मुंहिंजो पूरो जो पूरो वर्जन ई चेंज थो करे ऐं मुंहिंजी एफ आई आर खे वीक थो करे पियो मां जेको वर्जन ॿुधायो उहो हिननि न लिखियो जेको हिननि पंहिंजी मर्ज़ी ते लिखियो आहे उहो पूरो जो पूरो बेनिफिट ॾिए थो पियो अदर साइड खे अक्यूज़ पर्सन खे जंहिं जुर्म कयो आहे या ॾोह कयो आहे सो हिन जो अल्टीमेट हली वई आहे त हायर ऑफिशियल्स खे जेको आहे न कंप्लेंट्स
1: सो बिल्कुल हींअर असां हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल करण वारा आहियूं असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488 लीगल कॉर्नर प्रोग्राम आहे एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहिबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं अव्हां कॉल करे सघो था पंहिंजा सवाल बि पुछी सघो था अबाउट द टॉपिक एंड एज़ वेल एज़ तव्हांखे लीगल कंसल्टेशन घुरिजे त शहबाज़ साहिब जे तक़रीबन 10 खां 11 सालनि जे एक्सपीरियंस मां फ़ाइदो बि हासिलु करे सघो था ऐं फ्री ऑफ कॉस्ट तव्हांखे लीगल कंसल्टेशन मिलंदी सो लेट सी लाइन ते घरे केरु आहिनि अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम ओके कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे सर एफ आई आर ते असां टॉपिक असांजो आहे फॉल्स एफ आई आर कराईंदड़ जे लाइ तव्हां लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सां ॿुधाईंदा त हुनखे कहिड़ा

0: जीरो टे सौ हिकु एकी छहानवे अठ सौ एकवंजाह असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिल थी सघो था। मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो ॾहें खां शाम पंजे वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर शहर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे ऐं इलाजु डॉक्टर कंदो। अगरि अव्हांखे पिते में पथरी आहे, गुर्दे जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, पायल्स आहिनि, नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गुदूद वधियल आहिनि, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे यानी ऑपरेशन नाहे कराइणो, बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। इन खां अलावा केॾो बि पुराणो अव्हांखे संधनि जो सूरु आहे, जोड़नि जो सूरु आहे, कुंदरग जो सूरु आहे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। जिगर जी बीमारी आहे, हेपाटाइटिस बी आहे, हेपाटाइटिस सी आहे, जिन ॿारनि जो कदु नंढो आहे, कदु नथो वधे पियो, या जिन जो मर्दनि या औरतुनि जेको मोटापो थी वियो आहे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वेंदो आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301-9196-8051 डॉक्टर साहिब खे असां ख़ुश आमदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में, महफ़िल में, मोहबत में, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में आया आहिनि। डॉक्टर साहिबु अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम साईं।
0: डॉक्टर साहिबु ठीकु आहियो? त बि ठीकु आहे
1: जी साईं, अलाह ताला जा अहसान।
0: डॉक्टर साहिबु अव्हां कहिड़े कहिड़े ॾींहनि ते वेहो था क्लिनिक ते, इन खां अलावा कहिड़े बीमारियुनि जो इलाजु कंदा आहियो ऐं अॼु कहिड़े मौज़ू ॼाण ॾींदा?
1: औज़ु बिल्लाह मिन शैतान जीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाहु अलैहि वसलम। पहिरियां त सभु तारीफ़ूं उन रब पाक जूं जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो, सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जेको रोज़ाना बर वक़्तु टाइम ते निश्चित थींदो आहे, ऐं असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर शहर में हफ़्ते जा छह ई ॾींहं, जुमो छंछर आचर सूमर अंगारे जो ॾींहुं असांजी क्लिनिक ऑफ हूंदी आहे, यानी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। अरबा ख़मीस यानी छह ॾींहं हफ़्ते जो असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर शहर में वधण पोटा पेट्रोल पंप जे साम्हूं कोटड़ी रोड ते मौजूदु हूंदी आहे। सुबुह जो टाइमिंग जे हवाले सां सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। इन खां अलावा अव्हांखे ख़बर आहे त जेके रोज़मर्रा जा जेके मसाइल हूंदा आहिनि या जेके बीमारियुनि जे हवाले सां सिंधी ॾस हूंदा आहिनि, उहे बि अव्हांखे हिन प्रोग्राम जी तवसुस सां जेको आहे सो पहुचाईंदा आहियूं, या जेके नंढियूं या वॾियूं बीमारियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी अवेयरनेस ई जेको आहे सो हिन प्रोग्राम जी शिनाख़्त आहे। अहिड़े तरीक़े सां कहिड़ी बि बीमारी आहे, चाहे पुराणो नज़लो ज़ुकाम आहे, दम आहे, जोड़नि जी बीमारी आहे, या संधनि जो सूरु आहे, या कुनरग जो सूरु आहे, जिगर जी जेके बि बीमारियूं आहिनि, हेपाटाइटिस ए बी सी जेकी बि बीमारियूं आहिनि, उन खां अलावा जेको आहे सो गुर्दे जी जेकी पथरी आहे या पिते जी पथरी जे हवाले सां बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। बवासीर जो कामयाबु इलाजु, अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं मौज़ूआतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त जेके असां वटि क्लिनिक ते जी मां ॻाल्हि कई त हर क़िस्म जी बीमारी जा पेशंट्स ईंदा आहिनि, पर जॾहिं ॾींहनि में ॾिसंदा आहियूं त कुझु जेके ज़्यादा पेशंट्स जंहिं बीमारी जा ईंदा आहिनि, यानी उहा सम्झंदा आहियूं त हिन वक़्तु उनजी वबा फैलिजी रही आहे या उहा बीमारी ज़्यादा थी रही आहे, त उनजे बारे में अवेयरनेस ॾियणु असांजो कमु हूंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां हिन दफ़े बि असांजे क्लिनिक्स ते खोड़ सारा पेशंट ॿिया बि आहिनि, लेकिन चमड़ी जूं बीमारियुनि जे में बि हिकिड़ी ख़ासि बीमारी हूंदी आहे, सोरियासिस। सोरियासिस छा आहे, छो थींदी आहे, या कंहिंखे थींदी आहे, या जेकॾहिं थी वञे त उनखे जो कहिड़ो इलाजु हूंदो आहे, उनजे बारे में नंढी अवेयरनेस ॾिनासीं। जो सोरियासिस अहिड़ी बीमारी हूंदी आहे जो हीअ हिकु नंढी बीमारी नाहे, नाले में हिकिड़ी सोरियासिस जे नाले सां बीमारी आहे, लेकिन हीअ बीमारी 10-10 साल 20-20 साल पेशंट खे जेको आहे सो रहंदी आहे, ऐं उहो मरीज़ जेको आहे सो दर बदर जेको आहे सो घुमंदो रहंदो आहे, यानी हर शहर में हर डॉक्टर वटि, लेकिन शिफ़ा जेको आहे सो हुनखे घटि मिलंदी आहे। जेकॾहिं कुझु वक़्त जे लाइ उहो ठीकु थींदो आहे त दोबारा वरी उहा बीमारी तकलीफ़ हुनखे थी वेंदी आहे ऐं उहो पेशंट जेको आहे सो बार बार उन में जेको आहे सो मुबतला रहंदो आहे।

ऐं तमामु उन में ॿियूं बि खोड़ सारियूं पेशंट्स खे तकलीफ़ूं खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। ऐं हीअं जीअं त मां पहिरां ॻाल्हि कई त सोरियासिस, हीअ हिकु क्रॉनिक आटो इम्यूनी डिज़ीज़ आहे, जंहिंखे असां जीअं कॾहिं क्रॉनिक असां चवंदा आहियूं पुराणियूं जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, ऐं आटो इम्यूनी डिज़ीज़ उहा हूंदी आहे जेके अंदरियां ई जेके पंहिंजा सेल्स हूंदा आहिनि जिस्म जा, जॾहिं डेथ थियणु लॻंदा आहिनि या उन्हनि में फॉल्ट थियणु लॻंदो आहे त पंहिंजो ई जिस्म जेको आहे सो यानी हुन सां विहणु लॻंदो आहे, ऐं पोइ जेको आहे सो इम्यूनी सिस्टम जे नाकारा हुजण जे करे जेको आहे सो या जेके बि सेल्स हूंदा आहिनि डेथ थियणु लॻंदा आहिनि, ऐं पोइ उहा बीमारी वधंदी वेंदी आहे। अहिड़ी तरीक़े सां उन बीमारी में थींदो

0: 20 सालनि में मुबतला हुजे ऐं उहो जेकॾहिं हिते ठीकु थी वञे ऐं पंहिंजा फीडबैक असांखे FM रेडियो ते ॾिए या असां वटि अची ऐं हिते इंटरव्यू रिकॉर्ड कराए वञे त हीअ हिकिड़ी वॾी ख़ुशनसीबी आहे जेको आहे सो असांजे क्लिनिक जी ऐं असांजे इलाज जी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते होम्योपैथिक इलाज सां जेकॾहिं पेशेंट अहिड़नि वॾनि बीमारियुनि में ठीकु थी वञे थो त नंढियूं बीमारियूं हुनजे लाइ कुझु बि कोन्हे। वरी ॻाल्हि वरी बि असां हिकिड़ी कंदासीं त हिन सभु में रब ताला जी कर्म नवाज़ी आहे, जेकॾहिं उहो किथां बि शिफ़ा ॾिए त जेको आहे सो बिल्कुलु शिफ़ा थी सघे थी। अहिड़े तरीक़े सां ई जीअं मां ॻाल्हि कई त जेको आहे सो असां वटि इहे पेशेंट्स ईंदा आहिनि ऐं इहे अहिड़नि बीमारियुनि में जॾहिं ठीकु थी वेंदा आहिनि त पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि त हिकिड़ो व्यूज़ बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं जेको उहो पेशेंट लाइव जेको आहे सो असांखे फेसबुक ते जेको आहे सो रिकॉर्ड करायो वियो ऐं उहो व्यूज़ उन ई बीमारीअ जे हवाले सां आहे। अचो तव्हांखे बि जेको आहे सो हिन सां जेको आहे सो बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं।
1: दोस्तो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, हिकु दोस्त जा व्यूज़ आहिनि। जी डॉक्टर साहबु,

0: करे तव्हांजी हीअ बीमारी छॾे वई आहे, सिर्फ़ु दाग रहिया ऐं हींअर सिर्फ़ु दाग रहिया, ठीकु आहे। सो यानी तव्हां दवा मां जेकी कराई आहे उन इलाज मां तव्हां मुतमिन आहियो
1: ऐं तव्हांखे जेको आहे सो काफ़ी फ़र्क़ु पइजी चुको आहे। तव्हां ॿियनि जेके ॿुधनि था पिया उन्हनि जे लाइ छा मैसेज ॾींदो? बिल्कुलु, जेकॾहिं कंहिं बि मर्ज़ में माण्हू मुबतला आहे ऐं फ़र्क़ु नथो पए त उते रूबरू ॾेखारे सघंदा। सो असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहराबपुर हमारी ख़बर आहे साम्हूं मदन कोटा पेट्रोल पंप कोठड़ी रोड ते मौजूदु हूंदी आहे, जंहिंमें हफ़्ते जा 6 ॾींहं यकनी ऐं जुमो छंछरु आचर सूमर अरबा ख़मीस बाक़ी अंगार जो ॾींहुं क्लिनिक ऑफ हूंदी आहे। सो एड्रेस बि असां ॿुधाईसीं ऐं क्लिनिक जी ऐं मुतारिफ़ बि अवां ताईं थियासीं ऐं हूअं बि गुज़िरियल असांजे पंहिंजी प्रैक्टिस में 30 साल प्रैक्टिस में जॾहिं बि पेशेंट अहिड़े क़िस्म जो या कहिड़ी बि बीमारी में मुबतला हूंदो आहे त जॾहिं हुनखे दवा ॾींदा आहिनि अलाह ताला जी महिरबानी सां हू बिल्कुलु ठीकु थी वेंदो आहे ऐं अलाह ताला जी महिरबानी सां अदे खे बि सोराइसिस बीमारी हुई जंहिंमें जेको आहे सो चमड़ी जी बीमारी जंहिंमें मेडिसिन्स ॾिनीसीं ऐं अलाह ताला जी महिरबानी सां उहो अॼु बिल्कुलु सिहतयाब थी करे ऐं व्यूज़ ॾियणु आयो ऐं इंटरव्यू ॾेई वियो आहे। त पाण ॿुधो त मां ॿियनि ॿुधंदड़नि खे बि जेके असांखे ॾिसनि बि था त उन्हनि खे इहो ई मैसेज ॾींदासीं त तव्हां जेको आहे सो कॾहिं बि कंहिं बि बीमारी में मुबतला हुजो त होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूरु करे, छो जो होम्योपैथिक इलाजु बेज़र आहे, हिन जो को बि साइड इफ़ेक्ट आहे। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक
2: डॉक्टर साहबु तमामु बहितरीन। ॾिसो जीअं अधु उहो पंहिंजा व्यूज़ ॾिना त अलहमदिल्ला ऐं ठीकु थी वियो आहियां, ख़ुशि थी वियो आहियां। उन ते मां छा महसूसु कंदा आहियो साईं डॉक्टर साहबु?
1: जी साईं, बिल्कुलु इंतिहाई तमामु वॾी ख़ुशी थींदी आहे त हिकिड़ो पेशंट जेको लाइलाज थी करे अचे थो ऐं उहो असांजी दवाउनि मां असांजे इलाज मां होम्योपैथिक मां उहो ठीकु थी वञे थो त इन खां वधीक ख़ुशी जहिड़ी का ॻाल्हि न हूंदी आहे। छो जो हिकिड़ो कंहिंखे बीमार खे सुकून मिले त इहा वॾी हिकिड़ी जेको आहे सो इबादत वारी ॻाल्हि आहे।
2: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहराबपुर FM 94 जो आवाज़। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे। का बि बीमारी लाइलाज नाहे, कॾहिं बि मायूस नाहे थियणो। 0301-91-8851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे, 0301-91-8851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी सिहत बाबति मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिया शामिलु थी सघो था, 0301-91-8851 डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि जो असांजे स्टूडियो में अचनि था, पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे ईंदा आहिनि। डॉक्टर साहिब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में ॼाण ॾींदा आहिनि, ॿिया बि कुझु व्यूज़ आहिनि उहे बि अवां ताईं पहुचायूं था, जो जेको बि सिहतमंद थींदो आहे यकीननि असांजूं दुआऊं आहिनि उन्हनि सभिनी जे लाइ जेके बि मरीज़ हज़रात आहिनि पेशंट हज़रात आहिनि ऐं उहे सिहतमंद थी था वञनि, इहा असांखे ख़ुशी थींदी आहे ऐं असांजे लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि हूंदी आहे जो अलाह ताला उन्हनि खे सिहत बख़्शींदो आहे। FM जे थ्रू ॿुधी करे डॉक्टर साहिबु वटि पहुचनि था ऐं उन्हनि खे अलाह शिफ़ा ॾिए थो।
3: मेहराबपुर शहर में
2: तमामु बहितरीन डॉक्टर साहब, हिनखे अधरंगो हुयो?
1: जी साईं बिल्कुलु, नंढो ॿार हुयो, 12-13 साल जी उमिरि हुई।
2: 12-13 साल वारे खे बि अधरंगो थिए थो? माना
1: थिए थो।
2: अच्छा,
1: फेशियल पैरालिसिस हुयो।

0: हो,
1: सही
0: चेहरे ते जेको आहे
1: चेहरे
0: ज़ोन
1: ते।
0: जो हुयो, अख ते ऐं राइट साइड डाउन जो असरु हुयो, अख ते ऐं चप ते हुनजो फ़र्क़ु हुयो, ऐं पासो हुनजो सुन हुयो,
1: ओहो
0: गर हुयो जेको नंढो जेको आहे सो बिल्कुलु फील करे पियो। ऐं उहो जॾहिं पहिरियां हुन ट्रीटमेंट कराई
1: जी
0: बीहंदा ऐं
1: जी
0: हुनखे फ़र्क़ु न पियो, ऐं 2 महीननि खां पोइ 2 महीननि जे इलाज दौरान असां वटि अलाह जी महिरबानी सां हाणे हू बिल्कुलु 100%
1: माना
0: जेको आहे सो ठीकु
1: सेहतमंद आहे।
0: आहे।
1: उन जो फेस वग़ैरह, उन जो चेहरो मुंहं आहे
0: बिल्कुल, ऐं
1: उहो सही थी वियो, छो जो उन
0: हुनजी
1: में फेस पैरालाइज माना उन जी वाच वग़ैरह फ्री वेंदी आहे,
0: बिल्कुलु
1: ज़बान ते असरु पवंदो आहे, ज़बान
0: ज़बान
1: फ्री वेंदी आहे।
0: अलहमदिल्ला हाणे हू बिल्कुलु ठीकु थी वियो।
1: तमामु बहितरीन। हक़ीक़त इहा आहे डॉक्टर साहिबु, पहिरियों दफ़ो मां ॿुधां पियो त कंहिं 12-13 साल जे कंहिं नंढड़े खे पैरालाइज़ थियो हुजे, माना हुनखे अधरंगो
0: बिल्कुलु
1: थियो हुजे,
0: अल्लाह
1: बल्कि
0: ताला जी
1: उहो
0: महिरबानी
1: जी
0: सां
1: जी
0: पेशेंट शिफायाब थी वञे थो, असां लाइ इहा ई जेको आहे सो ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे।
1: बिल्कुलु सही था चओ।
0: जी साईं,
1: ऐं त अक्सर करे चवंदा आहिनि त पैरालाइज़ जेको आहे अधरंगो, इहो थींदो आहे हिकु ब्लड प्रेशर जे करे, या एजड माण्हू खे या वॾे खे ज़्यादा थींदो आहे, जो हुनखे को अहिड़ो टेंशन हूंदो, उन में बीपी हाई थी वियो, या
0: जी
1: हुन जेको आहे सो घणो कुझु अहिड़ो कयो जेको ओजागो वग़ैरह तमामु घणो लिमिट खां वधीक, जंहिंजे करे बीपी हाई थींदो, लो थियो, या उन में जेको आहे सो थी वियो। पर
0: बिल्कुलु
1: 12-13 साल वारे खे पैरालाइज़ अधरंगो थियणु माना ॾाढी माना मां सम्झा थो रेयर केस अहिड़ा हूंदा।
0: कुछ कुछ केस
1: तव्हांजो 30 साल जा
0: जेको
1: तजुर्बो आहे हिन में, तव्हां बिलीव करे सघो था त कॾहिं थियो आहे, माना घणनि खे थिए थो, माना
0: ॿारनि खे काफ़ी घटि थींदा आहिनि, अहिड़ा घटि केसिस, लेकिन थींदा ज़रूरु आहिनि।
1: अच्छा, थींदा ज़रूरु आहिनि, जीअं हीउ अधो हुयो, नंढड़ो हुयो,
0: अहिड़ा कई सारा पेशंट असां वटि पहिरियां बि जेको आहे सो अची चुका
1: माना
0: आहिनि,
1: अची चुका आहिनि।
0: ऐं हीउ जेको आहे सो पेशंट हुयो जंहिंखे असां छोजो मां पहिरियां बि पंहिंजे प्रोग्राम में चई चुकियो आहे त असां जेकी दवाऊं ॾींदा आहियूं त हिकु त असांजी स्टडी हूंदी आहे, उन खां पोइ पंहिंजे तजुर्बे में आयल हूंदियूं आहिनि, त पोइ ई जेको आहे उन पेशेंट खे असां ॾींदा आहियूं। वधीक शिफ़ा अल्ला ताला जे हथ
1: अलाह
0: में
1: ताला
0: हूंदी
1: जे
0: आहे।
1: हथ में अलाह ताला जी ज़ात शिफ़ा ॾींदी आहे। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी, मेहरापुर FM 94 जो आवाज़। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु 30 साल तजुर्बो रखंदड़ सीनियर डॉक्टर आहिनि, असांजे स्टूडियो में मौजूदु। मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जेकी इस्लामाबाद खां वठी करे इस्लामाबाद, कराची, नवाबशाह जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर साहिबु, मोरो में पंहिंजो ख़िदमत उसर अंजाम ॾिनो, मेहरापुर वासियुनि जे लाइ इहा ख़ुशकिस्मती आहे जो हिकु एॾो वॾो डॉक्टर असांजे मेहरापुर शहर में मौजूदु आहे, जो डॉक्टर साहिबु वटि परे परे खां ॾिसो बलोचिस्तान जा माण्हू बि डॉक्टर साहिबु वटि अचनि था, इन खां अलावा पंजाब जा माण्हू डॉक्टर साहिबु वटि अचनि था। ईअं न आहे जो इहा हिकिड़ी फैसिलिटी आहे, सहूलियत आहे मेहरापुर उन जे पसगिरदाई वारनि जे लाइ, जो डॉक्टर साहिबु हिते असां वटि मौजूदु आहे मेहरापुर शहर में। डॉक्टर साहिबु, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर आहे, गुर्दे जी पथरी हुजे, मसाने जी पथरी हुजे, पिते जी पथरी हुजे, उनजो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कनि था। संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, कुंदरग जो सूरु, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु आहे, नज़र जी कमज़ोरी आहे, कन वहे थो, कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचे थो, शुगर आहे, ब्लड प्रेशर आहे, दिलि जा मर्ज़ आहिनि, फाल जी खंघि, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिरी जो वधण, जिगर, हेपाटाइटस बी सी, इन खां अलावा जिन ॿारनि जो कदु नथो वधे, औरतुनि में वज़न जिन जो नथो वधे, या जिन औरतुनि या मर्दनि जो वज़न वधी वियो आहे, या मर्दनि ऐं औरतुनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आछरु ऐं सूमर ते, यानी हफ़्ते जा 6 ॾींहं मेहरापुर शहर में मौजूदु आहिनि। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक, यानी जर्मनी जेको मुल्क आहे उनजी फ्रेंचाइज़ आहे डॉक्टर साहिबु, उहा फ्रेंचाइज़ हिते खणी आयो कराची ऐं हैदराबाद खां बाद में मेहरापुर शहर में। डॉक्टर साहिबु जे तावन सां इहा फ्रेंचाइज़ हिते आई, ऐं इन तावन जे करे डॉक्टर साहिबु जूं महिरबानियूं आहिनि, जो हर जुमे, छंछरु ऐं आचार ते, यानी हफ़्ते जा जेके 3 ॾींहं आहिनि, चेकअप फीस उहा बिल्कुलु फ्री आहे। डॉक्टर साहिबु जेकी चेकअप फीस आहे बिल्कुलु मुफ़्त रखियल आहे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, तमामु घणी महिरबानी दोस्तों, मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेके सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था, कंहिं बि बीमारी बाबति डॉक्टर साहिब खां पुछी सघो था। त डॉक्टर साहिबु, की अवां बहितर आहे जेकी फस्ट एड आहे, फस्ट एड में सलाने नारे वारा माण्हू आहिनि, परे परे वारा माण्हू आहिनि, उन्हनि जे लाइ बहितरु आहे, बाक़ी अवां डॉक्टर साहिब जे रूबरू ॾेखारे वञो त वधीक बेहतर है। डॉक्टर साहब जो खास मेहरबानी। डॉक्टर साहब अजकल तमाम घनी गर्मी है, तमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम में जी वो फारवन की जान दे चुका है, माना गर्मी का वो बचा है फारवा बो भी कुछ जो सोचा तो खीरे के बारे में तुम जान दी उन फायदा वहाँ बुधाया तो गर्मी में ज्यादा यो इस्तेमाल करना घुर्जे फायदेमंद है। अड़ी का बी भी समझा तो शे हुई जी गर्मी में फायदे वाली शे हुई तो इन मल गर्मी सफा चोट है असा वट बेनता गर्मी है छो जो ये जून का बाद में जुलाई जो हल पो पो जी शुरू थो है तो माना जुलाई में गर्मी की तमाम घनी शिद्दत है जोर है तो इन बारे में चवे कुछ जान दी असूज बुधंदर के
0: जी सही बिल्कुल गर्मी गुजरल टिन चार महीनों का वी जोर शोर से है आईंदा अना ही टे महीना जो सो गर्मी तमाम घनी हलंदी इन एहतियात अवां सभिनी खे खबर आहे त पहिरां बि ॿुधायो आहे चाहे नंढो हुजे वॾो हुजे त उन्हनि खे एहतियात इहो ई करिणो आहे त पाण खे डिहाइड्रेट थियण खां पाण खे बचाइणो आहे यानी पाणी ज़्यादा खां ज़्यादा इस्तेमालु करिणो आहे ॾींहं में ॿ टे दफ़ा वेंझणो आहे कैप जो इस्तेमालु करिणो आहे बग़ैर कैप जे यानी मथो ढके जेको आहे सो ॿाहिरि निकिरणो आहे मथे ढकण खां अलावा ॿाहिरि नाहे निकिरणो जेकर कमकार आहे त ॿाहिरि माण्हू निकिरे जेकर कमकार न आहे त ख़्वाम खां जेको आहे सो ॿाहिरि न निकिरे ऐं कोशिशि करे त जेको आहे सो टी चई बजे खां बाद में जेको आहे सो ॿाहिरि निकिरजे ॿारहें खां वठी टी चई बजे ताईं जो वक़फ़ो करणु हुन जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे छो जो इन टाइम में तमामु घणी हीटअप हूंदो आहे ऐं इन में हीट घणी लॻी सघे थी जंहिंजे करे जेको आहे सो हीट स्ट्रोक थी सघे थो ऐं हीट स्ट्रोक थींदो आहे तव्हांखे ख़बर आहे त उन में डिहाइड्रेशन जिस्म थी वेंदो आहे पाणी जी नमकियात जी कमी थी वेंदी आहे पोइ माण्हू हाइपो में वञी सघे थो ऐं बेहोश थी सघे थो ऐं बेहोशी खां पोइ ॿिया वॾा नुक़सान थी सघंदा इन जे करे कोशिशि इहा करणी आहे त पाणी ज़्यादा खां ज़्यादा इस्तेमालु करिणो आहे ऐं थधियूं शयूं जेको आहे सो इस्तेमालु करणियूं आहिनि थधियुनि शयुनि में जीअं मां ॿुधाईंदुसि छो जो जीअं अॻे दफ़े फारवा ॿुधायोसीं त ॾिसो हर फ्रूट जी हिकिड़ी लिमिटेड जेको आहे सो पंहिंजी सीज़न हूंदी आहे उन खां पोइ हू ख़तमु थी वेंदो आहे हिन वक़्तु जेकी सीज़न आहे ऐं उहो बि लिमिटेड आहिनि ख़ासि करे हिन वक़्तु जेको खीरो वंगो त ॿारहं ई महीना जेको आहे सो हूंदो आहे लेकिन हिन वक़्तु उहो बि तमामु ज़रूरी आहे न छो जो इहे उहे फ्रूट आहिनि जिन में 90% जेको आहे सो पाणी आहे ऐं उहे असांजे जिस्म जे लाइ तमामु ज़रूरी आहिनि जेके असांजे खुश्की खे बुझाइनि था यानी जेकी खुश्की थियणु ॾींदा मैदे जी जेकी खुश्की हूंदी आहे उन खे ख़तमु कंदी आहे अहिड़े तरीक़े सां ॼमूं जेको आहे सो अॼुकल्ह तमामु हिकिड़ी बहितरीन सौगात आहे न सिर्फ़ु आम माण्हू जे लाइ बल्कि शुगर वारे मरीज़ जे लाइ बि जेको आहे सो जामन जंहिंखे ॼमूं चवंदा आहियूं उहो तमामु हिकिड़ो बहितरीन आहे चाहे वात में छाला हुजनि या खुश्की जी तकलीफ़ हुजे या शुगर वधियलु हुजे या मादे जी ख़राबी हुजे मादे में गर्माइश हुजे जिगर जी ख़राबी हुजे उन में ॼमूं जेको आहे सो बहितरीन आलू बुखार जेको आहे सो चाहे खुश्क आलू बुखार हुजनि चाहे फ्रेश आलू बुखार हुजनि उहे तमामु बहितरीन जेको आहे सो आहिनि उहे तमामु ज़रूरी आहिनि या जेको आहे सो पपीतो पहिरियां ॿुधाईंदे आहिनि पपीतो बि तमामु हिकिड़ो बहितरीन ग़िज़ा आहे बहितरीन फ्रूट आहे छो जो इहे उहे शयूं आहिनि जिन सां पेशंट जेको आहे सो तमामु सिहतमंद थी वेंदो आहे अहिड़ी तरीक़े सां ख़ुश्की लाइ स्पंगुर जी दुही जेको आहे सो तमामु बहितरीन आहे तुख में मलंग आहे अवां मशरूबात में जेको आहे सो पाणी में ऐं इन में जेको आहे सो विझी इस्तेमालु करे सघो था सुबुह जो नेराणे जेको आहे सो इस्तेमालु करे सघंदो आहे इन सां काफ़ी जेको आहे सो जिगर खे जेको आहे सो ठंडक पहुचंदी आहे ऐं जिगर तव्हांजो जेको आहे सो थधो रहंदो आहे अहिड़े तरीक़े सां कारी ड्राक खाए राति जो तव्हां पाणी में पिसाए रखो सुबुह जो नेराणे खाओ उहो बि काफ़ी जेको आहे सो तव्हांखे फ़ाइदो ॾिए लीमू पाणी हिन मौसम में तमामु बहितर आहे तमामु ज़रूरी आहे उनजो इस्तेमालु कयो ऐं जेको आहे सो पाण खे जेतिरो थी सघे त सूरज जी तपिश खां जेको आहे सो बचायो
1: तमामु बहितरीन डॉक्टर साहिबु ऐं वाक़ई गर्मी आहे ऐं इन शदीद गर्मीअ में माण्हू काफ़ी ॾिसंदो माना माण्हू फोत बि थी वेंदा आहिनि गर्मी में की बेहोश थी वेंदा आहिनि की बेहोश थी किरी पवंदा आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेकी गर्मी हले पई ऐं वाक़ई अहिड़ी ई आहे जंहिंमें हिन में ई माण्हू किरंदा आहिनि
0: हिन में बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदा ऐं उन जा कुझु जेके फोत थियण जा असबाब इहे बि आहिनि जो घणा वरी छा कंदा आहिनि त यकदमि जेको आहे सो ॾिसो त हींअर ॿाहिरि माण्हू आहे ऐं उनजो जिस्म तपियलु आहे ऐं यकदमि वञी जिस्म ते तपियल जिस्म ते पाणी विझंदो आहे या तपियल जिस्म ते पाणी पीअंदो आहे त उन सां जेको आहे सो उहो उहा मतिलबु पेशंट जेको आहे सो उन में फॉलिज थी सघे थो ऐं जेको आहे सो पेशंट जेको आहे सो उन में बि छो जो हिकिड़ी शइ जूं जेके रगूं आहिनि उहे डैमेज थी वेंदियूं आहिनि जॾहिं कंहिं बि गर्म शइ ते तव्हां पाणी विझंदो त उहे जेको आहे सो बिल्कुलु तव्हां ॾिसंदो त उन्हनि मां भाप निकिरंदी आहे, या घणा ए सी में हूंदा आहिनि ऐं ए सी मां यकदमि जेको आहे सो ॿाहिरि निकिरी वेंदा आहिनि त उहो बि नुक़सानकार आहे, या ए सी में आहिनि यकदमि वरी वेंझण विया, त इहे नंढड़ियूं नंढड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि, इन्हनि जो जेको आहे सो थोरो घणो एहतियात तमामु जेको आहे सो ज़रूरी आहे,
1: तमामु ज़रूरी आहे, तमामु बहितरीन। दोस्तो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था, 0301-9196-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल नवाबशाह डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब, 0301-9196-851 होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सिंध जो मशहूरु मरूफ डॉक्टर। कॾहिं बि तव्हांखे मायूस न आहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो इलाज मौजूदु आहे। जेकॾहिं तव्हांखे गुर्दे जी पथरी आहे, पिते जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। संदनि जो सूरु आहे, जोड़नि गोॾनि जो सूरु आहे, कुंदरक जो सूरु आहे, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो, मथे जो सूरु अधु मथे जो सूरु आहे, नज़र जी कमज़ोरी, कन वहे थो, कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचे थो, शुगर आहे, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालज खंघ, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिरी जो वधण, जिगर, हेपाटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चहिरे जो रंग सांवरो, चहिरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, औरतुनि में वज़न जो वधी वञणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर साहब, आख़िर में तव्हां असांजे मौजूदु ॿुधंदड़नि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा?
0: जी वॾी महिरबानी, पैगाम इहो ई आहे त पीउ माउ जी तमामु घणी ख़िदमत करियो ऐं जेको आहे सो जेतिरो थी सघे त उन्हनि खे जेको आहे सो ख़ुशि रखंदा कयो।
1: ऐं असीं तव्हांखे इहो चवंदासीं त अञा जेके ॾींहं आहिनि जेके जेके वेहो था हिते मेहरापुर शहर में, असांजे मौजूदु ॿुधंदड़नि खे इहो ब्रीफ कंदा हलो, इहो रिपीट कंदा हलो, तव्हांजो नंबर या तव्हां सां केरु राबितो करे, कहिड़े नंबर ते राबितो करे थो, कहिड़ो ॾींहुं मां चेकअप फ्री रखियो आहे?
0: जी बिल्कुलु, हिन में हिकिड़ो ॾींहुं ज़रूरु यादि रखिजो त अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, अंगारे जो ॾींहुं जेको आहे सो आउट ऑफ सिटी हूंदा आहियूं, इन जे करे अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। बकाया हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमो, छंछर, आचर, सूमर, अरबा, खमीस असां मेहरापुर शहर में कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप ते मौजूदु हूंदा आहियूं। टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं। कॉन्टेक्ट नंबर 0301-9196-851 इहो ज़रूरु यादि रखिजो। ऐं हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, यानी 3 ॾींहं जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं। हिन में मरीज़ खां चेकअप फीस नाहे वरिती वेंदी, बाक़ी मरीज़ दवाऊं जेको आहे सो पंहिंजो ख़रीद कंदो आहे, बाक़ी चेकअप फीस हुनखे मुआफ़ हूंदी आहे।
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। दोस्तो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, असांजे स्टूडियो में मौजूदु हो सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु, जेको सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहियो हो। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानी, मोहबतूं आहिनि जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। इन हिते अॼोको प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। दोस्तो असीं इहो ज़रूरु चवंदासीं त पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे घर वारनि जो, पंहिंजे वालदेन जो, पंहिंजे नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, पाड़े वारनि जो, सभिनी जो ख़्यालु रखो। जीव आहे त जान आहे, सिहत आहे त सभु कुझु आहे। हिन वक़्तु तमामु घणी गर्मी आहे, गर्मी खां पंहिंजो पाण बचाव करियो। इन ते अॼु प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान हाकिम अली जिस्काणी खे ॾींदा इजाज़त, दुआउनि में यादि रखंदा, अलाह निगहबान, अलाह वाहिबु।

0: ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320 1800003

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान से मुलाकात, वितर्फी सहकार के वधीक हथी डियण ते इतफाक। तुर्क सदर पारा खत्े में अमन के क्याम लाए पाकिस्तानी कोशिशन की सारा सूरत हाल से बिन्हीं अगवान जो रबतन में रहने ते भी इतफाक। रजब तैयब अर्दोगान चयो तो पाकिस्तान ए तुर्किया सदाई गड बीठल रहंदा, आलमी अमन लाए इस्लामाबाद मफाहमत ते अमल जरूरी है, अमन तरक्की ए खुशहाली लाए पाकिस्तान जा ख्याल कदम वाखण जोगा। शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान ए तुर्किया विच में लागापा वक्त गुजरण से गड वधीक मजबूत थिया हैं। तुर्किया ए पाकिस्तान गडियल तौर ते अवामी भलाई ए तरक्की लाए कम कंदा रहंदा। ईरान ए अमरीका विच में गालियन जो बियो दौर पाकिस्तान में थींदो, अरब मीडिया की दावा। अल अरबिया की रिपोर्ट मूजिब ईरान ए अमरीका विच में गालियन जो बियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो। ईरान ते लगल पाबंदियन एटमी प्रोग्राम ए मुंजमित असासन बाबत गालियूं थींदियूं। ईरानी अफवाज जो फैसलो शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन बाद थींदो।
1: بني امرمون رهبر معظم و معزز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای به قوا آمدید، جمهوری اسلامی رو ساقط کنید، ایران رو تجزیه کنید، اما ببینید و بشنوید، مستحکم تر از گذشته، پر سلامت تر از 4 ماه پیش اعلام می کنیم لبیک یا خامنه ای.

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-16-23-793।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहे
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300324372
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूम

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
1: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3-8-5-6-9।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, एम ए, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो

चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 96 851

0: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेट

अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो बियो दौर पाकिस्तान में थींदो। अरब मीडिया जी दावा अल अरबिया जी रिपोर्ट मूजिब ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो बियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो। ईरान ते लॻल पाबंदियुनि, एटमी प्रोग्राम ऐं मुंजमिद असासनि बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरानी अफ़द जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जी तदफ़ीन बाद थींदो। आबला हरमुस खिते जे ॿाहिरि वारियुनि क़ुवतनि लाइ फ़ौजी ताक़त ॾेखारण वारे मुज़ाहिरे जो हंधि आहे। ईरान हिकु ज़िमेवार ताक़त ऐं आपनाए हरमुस जी सलामती जो ज़ामिन आहे। ईरान जे नाइब परॾेही वज़ीर क़ासिम फरीदाबादी चयो आहे त आपनाए हरमुस में ग़ैर मुल्की फ़ौजी क़ुवत खे भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। बुहरान पैदा करण लाइ मुहिम जोई कंदड़नि खे नतीजा भुगणा पवंदा।
1: लेकिन कराची को वफात के हवाले करें, नए इंतजामी यूनिट्स बनाएं, सड़कों पर आने का वक्त आ गया है। एहतजाजी तहरीक के कॉल देने का वक्त आ गया है और एमकेएम पाकिस्तान उसके लिए अवाम से राबते में है। अवाम कुछ ना कुछ अब करें, अब करने का वक्त है, नाउ और नेवर। मैं इसलिए कह रहा हूं, पर दूसरा हमारी गवर्नरशिप हमें वापस की जाए।
0: एमकेएम हिकु भेरो ॿीहर कराची खे इंसामी यूनिट आहे वफ़ाक हवाले करण जो मुतालबो करे छॾियो। मुतालबा तस्लीम न थियण ते रस्तनि ते अचण जी धमकी, सिंध जी गवर्नरशिप ॾियण जो बि मुतालबो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे एमकेएम जे फारूक सत्तार चयो त पीडीएम जे पहिरें हुकूमती दौर में थियल।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।